印度特里广播电台听众朋友们，请收听 Nusrat Fateh Ali Khan 唱的印地语歌曲。

印度德里广播电台，听众朋友们，现在我们播送阿贝达·巴云唱的一首歌曲。

Shoting Sukhvinder He Shankar Mahadevan 唱的一首歌曲

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान, विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

मंत्री लुआ नगरी अमेरिका से गात मार्को रूबियो मन डिस्क्रिप्शन का ने इंडिया सवागे साला सातु मित्र स्ट्रेटेजिक तरपंतिंग बागी अमेरिका से गात प्रेसिडेंट अमेरिका सरकार डोनाल्ड ट्रंप मैया तकान बाबा अमेरिका सरकार तीडा आकान तरबुरु बुरु डालाम मैये पाकाती कसपाकातान ईरान दी तंगा पंबिचारान मंगनाय प्रांग पमरिंता मंग इम्बाब सलरु वार्गा नगारा इंडिया उन्तुक मंग हिंदारी परजालानान यंग तीडा मंडसाक कांगो उगांडा डान सुडान सलातान मंग इंगात बरकोवानिया वावा इबोला डी कजवारान गुलात आसिया ऊ डुआ पलुतीगा पारा पगुलात इंडिया बरहासिल मराई तीगा में डाली एमा डुआ पेराग डन तीगा पडुंगु डी वियतनाम डन डालम आजान क्रिकेट ईपीएल टीम इंडिया टीम दिल्ली कैपिटल्स मंगलाकन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स dengan selisih 40 run di Kolkata. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashwani Seksi Bahasa Indonesia India untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu Instrumentalia.

0: Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
3: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
5: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
8: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
9: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े

0: समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड यूज

0: इसी के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि यूसीसी से कोई कबाइली हकूक खत्म नहीं होंगे।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इस जीत से बीजेपी के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुनों की उनके गैर मामूली काम पर सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए सभी लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत में आज 2.61 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। ये इजाफा 2 हफ्ते में चौथी बार है, लिहाजा अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल की कीमत 95.20 रुपए फी लीटर होगी। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस माह की 28 तारीख को होने वाले यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दाखिले के मुश्तरका इम्तिहान 2026 को मुलतवी कर दिया है। NTA ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नजर यह फैसला किया गया है। एजेंसी ने बताया कि अब इस इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। NTA ने उम्मीदवारों को ताजा जानकारी के लिए उसकी बाजाब्ता वेबसाइट देखने का मशवरा दिया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबात के पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपीज हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसीख कर दी है, जो कल तक थी। CBSE ने कहा कि यह फैसला इस मकसद से किया गया है कि तलबा को अपनी दरखास्तें दाखिल करने के लिए पूरा वक्त मिल सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल को की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतीज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालदेन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नजर किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा कि IITs के माहिरीन की यह टीम निजाम में तकनीकी बेहतरी लाने, नीज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारदगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए करेगी। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल माली और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से बातचीत की। ये बातचीत CBSE के बाद के नतीज और जवाबात के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल के दौरान तलबा को दरपेश तकनीकी और अदायगी से मुतालिक मामलात के बारे में की गई है। वजारत तालीम ने बताया कि इस बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE को इसकी अदायगी के निजाम और इम्तिहानात के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल को लाजमी तौर पर मरबूत किए जाने में मदद देंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से शदीद तौर पर लड़ना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाजह रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को खत्म करने और दुनिया को मजीद मौके फराहम करने में है। وزیر خارجہ نے کہا کہ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جن سے دونوں ملکوں کو بہت سے میدانوں میں مؤثر دفاعی شراکت

0: मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहां तक कि उन्होंने खुद को वजीर आजम मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सर्गियो गोर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह राजधानी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के 4 रोजा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और ये मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई मुआहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा मुआहदा तेहरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा और ये मुआहदा साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तरफ से किए गए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आजमीन हज सऊदी अरब में मक्का मौजमा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क्याम के बाद कल सुबह वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफा जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی سے لڑنے

स्वर गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शुभम कुमार से राग नट भैरव। संगत कलाकार थे मुस्तफा हुसैन तबले पर, गुलाम मोहम्मद सारंगी पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

उसने ग्रामीण तराने संदिदित के इस फिल्म में तुम सा नहीं देखा मुझे वह इनक तराने दिखा रहा मैं से तो योदी नारायण इस फिल्म में सिर्फ तुम थम जो फरमाई

قد جاءكم بصائر

0: समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में

0: उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janajati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
4: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri ke naate
5: as the Home Minister.

0: घर आंगन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन और मैं हूँ आपके साथ मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरुआत करते हैं भारत कोकिला सरोजनी नायडू के गूंजते हुए शब्द के साथ। हम आगे बढ़ते हैं ऊंचाइयों की ओर ताकि अपने भीतर छुपी रोशनी को पहचान सके। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है, ये उस सफर का नाम है जहां हर कदम पर हमें अपने और करीब ले जाता है। कभी उम्मीद बनकर, कभी हौसला बनकर और कभी एक छोटी सी आवाज बनकर जो कहती है कि चलते रहो। तो आज इस नए दिन में थोड़ा सा आसमान अपने नाम कीजिए, थोड़ा सा विश्वास आपके साथ रखिए और देखिए आपकी अपनी रोशनी आगे का रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। सुनते रहिए घर आंगन, बने रहिए हमारे साथ।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी पतंग। और दोस्तों, ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये यादों की वो नदी है जो पीढ़ियों को बहाते हुए आज तक आ रही है। कभी सुबह की शुरुआत बनी, कभी रातों की तन्हाई का साथी। ये वही जादू है जिसे हम कहते हैं आकाशवाणी। 90 वर्षों का यह सफर केवल समय की गिनती नहीं है, बल्कि उन अनगिनत आवाजों की कहानी है जिन्होंने देश के हर कोने में अपनी पहचान छोड़ी। जब देश आजाद हुआ तो उसकी पहली सांस रेडियो की तरंगों पर गूंजी। जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक संबोधन या हर सुबह की शुरुआत, ये आकाशवाणी है कि

भरोसेमंद स्वर से रेडियो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। अगर कार्यक्रमों की बात करें तो आकाशवाणी ने मनोरंजन, ज्ञान और संस्कृति का ऐसा संगम बनाया जो आज भी यादों में जिंदा है। हवा महल जिसके नाटकों ने कल्पना को पंख दिए, जयमाला जिसने हमारे सैनिकों तक देश का प्यार पहुंचाया, बाल मंडली और बाल सभा जहां बच्चों की दुनिया खिलखिलाती थी, युवाणी जिसने युवाओं को अपनी बात कहने का मंच दिया, फार्म एंड होम जिसने किसानों को नई दिशा दी, समाचार और समाचार प्रभात जिनकी विश्वसनीयता आज भी मिसाल है, और फिर वो खास कार्यक्रम छाया गीत, विविध भारती संगीत सरिता आपकी फरमाइश, हर शो हर धुन जैसे किसी अपने की चिट्ठी हो। लेकिन आकाशवाणी की असली ताकत रही उसकी आवाजें, वो आवाजें जो सुनते ही भरोसा जगा देती थी। देवकी नंदन पांडे की गंभीरता, वरुण हल्दर, लोटिका रत्नम की गरिमा, मेलविन डिमेलो की गूंजती हुई प्रस्तुति, इन सब ने मिलकर शब्दों को सिर्फ सूचना नहीं एहसास बना दिया। और संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार जैसे स्वर आकाशवाणी के जरिए हर दिल तक पहुंचे। आज भी जब कहीं से वो परिचित स्वर सुनाई देता है, ये आकाशवाणी है, तो लगता है जैसे बचपन, यादें और अपनापन सब एक साथ लौट आए हो। 90 वर्षों की ये यात्रा हमें सिखाती है कि तकनीक बदल सकती है, माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची आवाज हमेशा दिल तक पहुंचती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म छोटी सी बात।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार।

0: मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और दोस्तों, सशक्तिकरण सिर्फ शब्द नहीं है, ये परवरिश का तरीका है। ये बचपन से शुरू होता है, जब हम उसे ये नहीं कहते कि तू पराई है, बल्कि ये कहते हैं कि तू हमारी ताकत है और हमेशा रहेगी। सबसे पहले बेटियों को सिखाएं मानसिक सशक्तिकरण। बेटियों के दिमाग में ये कभी मत भरिए कि उनकी अंतिम मंजिल सिर्फ शादी है। उन्हें सिखाइए कि उनकी पहचान, उनके सपने, उनकी मेहनत किसी रिश्ते से कम नहीं है। उन्हें फैसला लेना सिखाइए, सवाल करना सिखाइए और सबसे ज़रूरी, खुद पर भरोसा करना सिखाइए। फिर आता है शारीरिक सशक्तिकरण। बेटी है, नाजुक है, ये सोच बदलनी होगी। उसे खेल के मैदान पर उतरने दीजिए, उसे दौड़ने, गिरने, उठने दीजिए। उसे सेल्फ डिफेंस सिखाइए ताकि वो डर कर नहीं, डट कर जीना सीखे। लेकिन सिर्फ ताकत ही नहीं, उसे भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाइए। उसे ये समझाइए कि रोना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर मुश्किल में टूट जाना भी जरूरी नहीं है। उसे अपनी भावनाओं को समझना, संभालना और व्यक्त करना सिखाइए। यही है असली इमोशनल इंटेलिजेंस। और सबसे जरूरी, उसे ये यकीन दिलाइए कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, उसका घर, उसका परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ये भरोसा उसे हर डर से बड़ा बना देगा। बेटियां तब मजबूत बनती हैं जब समाज नहीं, घर उनके साथ खड़ा होता है। तो आइए आज से अपनी बेटियों को सिर्फ अच्छे संस्कार ही नहीं, मजबूत सोच, मजबूत शरीर और मजबूत आत्मविश्वास भी दें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हर बेटी ये कह सके, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं, मैं अपनी ताकत हूं।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म ज्वेल थीफ से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
0: और दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे समय की उस दहलीज पर जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में सांस लेता है। ओरछा, मध्य प्रदेश का एक छोटा, शांत और कुछ हद तक अनदेखा शहर। यही शहर अपने भीतर छुपाए बैठा है ऐसे अनमोल रत्न जो आज भी समय को चुनौती देते हैं। इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है ओरछा किला, एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सोच, विज्ञान और कला के अद्भुत मेल से बना है। 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं द्वारा निर्मित यह किला आज भी उतना ही मजबूत है। जब आज की आधुनिक इमारतें कुछ दशकों में ही थक जाती हैं, तब ओरछा का किला सदियों से अडिग खड़ा है। यहाँ की जहांगीर महल, जिसे बनाने में पूरे 22 साल लगे, इसके डिजाइन में हवा और रोशनी का एक ऐसा संतुलन है जो बिना किसी मशीन के तैयार किया गया है। सच में यह आज के स्थापत्य कला को भी चुनौती देता है। और राजा महल की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स जैसे हर दीवार कोई कहानी सुना रही हो। इतिहास यहाँ सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। और इसी शहर का एक अनमोल रत्न लक्ष्मी नारायण मंदिर, किले जैसी बनावट और भीतर की भित्ति चित्रकला इसे बेहद खास बनाती है। और इसी कड़ी में आता है भव्य चतुर्भुज मंदिर। ऊंचे ऊंचे शिखर, महलों जैसी बनावट, यह मंदिर किसी किले से कम नहीं लगता। इसकी ऊंचाई और विशालता देखकर आज भी हैरानी होती है कि उस समय इतनी भव्य रचना कैसे संभव हुई होगी। बेतवा नदी के किनारे खड़ी ओरछा की शाही छतरियां, ये राजाओं की स्मृति में बने स्मारक होते हैं, आज भी शान से खड़े हैं। जब ढलते सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास फिर से जीवित हो उठा हो। दोस्तों, ओरछा सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि वो जगह है जहां हर मोड़ पर इतिहास छुपा है अनमोल रत्नों के रूप में। आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तब ओरछा हमें सिखाता है कि असली अद्भुत वही है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जाए। तो अगली बार जब आप कुछ नया देखने की सोचें तो इस शांत से शहर को जरूर याद कीजिएगा। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी कहती है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म थी प्रेम नगर।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
0: और अब एक कहानी रंगों, परंपरा और उस अदम्य आत्मविश्वास की जिसने एक साधारण स्त्री को असाधारण बना दिया। यह कहानी है पद्मश्री से सम्मानित महासुंदरी देवी की और उनकी पहचान बनी कला मधुबनी पेंटिंग की। बिहार के मिथिला क्षेत्र की मिट्टी में जन्मी महासुंदरी देवी बचपन से ही कला को अपनी सांसों में महसूस किया। उस समय न तो बड़े बड़े कैनवस थे, ना ही आधुनिक रंग, बस दीवारें थी, आंगन था और प्रकृति से मिले रंग। उन्होंने सीखा कि हल्दी से पीला, काजल से काला और फूलों से लाल रंग कैसे बनाया जाता है। उनके हाथों में जैसे जादू था, हर रेखा एक कहानी कहती थी, हर आकृति में संस्कृति सांस लेती थी। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब यह पारंपरिक कला धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, लोग इसे भूलने लगे। तभी महासुंदरी देवी ने ठान लिया कि वो इस कला को मिटने नहीं देंगी। उन्होंने घर घर जाकर महिलाओं को सिखाया, कागज पर मधुबनी को उतारने की शुरुआत की और इस लोक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बनाई पेंटिंग्स में देवी देवता, प्रकृति, विवाह संस्कार सब कुछ जीवंत हो

जाता था। ये सिर्फ चित्र नहीं थे, यह एक पूरी संस्कृति की जीवित कहानी थी। उन्होंने मिथिला हस्तशिल्प कलाकार औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना की, जिसने कलाकारों और हस्तशिल्प के विकास को नई दिशा दी और वर्ष 1982 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें चित्रकला की लिविंग लेजेंड माना जाता था और वर्ष 2011 में भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। मधुबनी के साथ साथ उन्हें मिट्टी, पेपर मेश, सुजनी और सिक्की शिल्प में भी विशेष निपुणता हासिल थी, लेकिन असली सम्मान उन्हें तब मिला जब उनकी कला ने हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। महासुंदरी देवी हमें सिखाती हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए बड़े साधकों की नहीं बल्कि बड़े हौसलों की जरूरत होती है। रंगों से लिखी एक कहानी, मिट्टी की खुशबू में बनी निशानी, नन्हे से आंगन से उड़ान भरी एक स्त्री ने दुनिया को पहचान दी।

तो आइए देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी ही देसी हेल्दी ड्रिंक्स की झलक लेते हैं। वरियाली शरबत गुजरात से है। सौंफ से बना ये शरबत पेट को ठंडक देता है और पाचन को भी बेहतर बनाता है। इमली का अमलाना राजस्थान से। खट्टा मीठा इमली का ये पेय लू से बचाने में बेहद असरदार माना जाता है। पानकम दक्षिण भारत से। गुड़ काली मिर्च और इलायची से बना ये ड्रिंक शरीर को एनर्जी देता है और हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। सत्तू का नमकीन शरबत यूपी और बिहार से। प्रोटीन से भरपूर ये देसी ड्रिंक तुरंत ताजगी और ताकत देता है। आम पूड़ा शरबत बंगाल। भुने हुए कच्चे आम से बना ये शरबत गर्मी में ठंडा का बेहतरीन उपाय है। रागी अंबाली कर्नाटक से है। रागी से बना ये पेय कैल्शियम और फाइबर से भरपूर है, पेट के लिए बहुत ही हल्का और पौष्टिक है। सोल कढ़ी कोंकण से। नारियल और कोकम से बना ये ड्रिंक पाचन में मदद करता है और शरीर को ठंडा रखता है। जिगर ठंडा तमिलनाडु से। दूध बादाम और शरबत ये से ये बना ठंडा पेय दिल और दिमाग दोनों को ही सुकून देता है। तो अब बात करते हैं कोकण की खास और बेहद ताजगी भरी सोल कढ़ी की पूरी रेसिपी की। तो इसके लिए आपको चाहिए कोकम, भीगा हुआ ताज़ा नारियल का दूध, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, नमक और हरा धनिया। सबसे पहले भीगे हुए कोकम को हल्का मसल कर उसका खट्टा पानी निकाल लें। अब एक मिक्सर में लहसुन, जीरा, हरी मिर्च को पीस लीजिए। इस पेस्ट को नारियल के दूध में मिलाएं, फिर उसमें कोकम का ठंडा पानी डालें। स्वादानुसार नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। ऊपर से हरा धनिया डालकर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि गर्मियों में शरीर को संतुलित रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। और दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइए। हमें ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले, मनमोहन सिंह और किशोर कुमार को फिल्म लावा से। और दोस्तों, कहते हैं खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, दिल खुश करने के लिए भी होता है, लेकिन जब यही खाना कैमरे के सामने आता है तो वो एक आर्ट बन जाता है, कला बन जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं कैसे अनोखे करियर की, जो स्वाद, खूबसूरती और रचनात्मकता तीनों का संगम है, फूड स्टाइलिंग। जब आप किसी विज्ञापन में परफेक्ट दिखता हुआ बर्गर, सॉफ्ट गुलाब जामुन या भाप छोड़ती हुई चाय देखते हैं, तो वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो एक कलाकार की मेहनत होती है। इस कलाकार को कहते हैं फूड स्टाइलिस्ट। फूड स्टाइलिस्ट का काम होता है खाने को इस तरह से सजाना कि वो कैमरे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। कई बार इसके लिए छोटे छोटे ट्रिक्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए मैश्ड पोटैटो या चाय में भाप दिखाने के लिए कॉटन। अब सवाल ये है कि क्या ये करियर आपके लिए सही है? अगर आपको खाना बनाना पसंद है, रंगों और प्रेजेंटेशन की समझ है और कैमरे के पीछे की दुनिया आपको आकर्षित करती है, तो फूड स्टाइलिंग आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। करियर की शुरुआत आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया शूट्स, फूड ब्लॉग्स या फिर लोकल ब्रांड्स के साथ काम करके। धीरे धीरे अनुभव और पोर्टफोलियो मजबूत होता है और फिर बड़े विज्ञापन, मैगजीन और टीवी कमर्शियल्स तक का रास्ता खुल जाता है। आप होटल मैनेजमेंट, कुकरी कोर्स या फोटोग्राफी में डिप्लोमा लेकर भी इस फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है आपकी क्रिएटिव सोच और लगातार अभ्यास। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस करियर को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। आप अपना काम दुनिया को दिखा सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून है और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बनाए खाने को सिर्फ खाएं नहीं बल्कि उसे देखकर ही वाह कह उठें, तो फूड स्टाइलिंग आपके लिए खूबसूरत और रचनात्मक करियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर प्लेट एक कैनवस है और हर डिश एक कहानी।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म गाइड से, और अब हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे छोटे से ख्याल की जो आपकी जिंदगी में बड़ा सुकून ला सकता है। घर का एक कोना सिर्फ अपने लिए सजाना। जी हाँ, हम सबके घर में कई कमरे होते हैं, कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन क्या उस घर में हमारा अपना एक कोना होता है? एक ऐसा कोना जहाँ आप सिर्फ आप हों, ना कोई काम की चिंता, ना किसी की उम्मीद का बोझ। ये कोना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस एक छोटी सी जगह जहां आपकी पसंद की खुशबू हो, हल्की सी रोशनी और आपके मन को सुकून देने वाली चीजें हों। और सोचिए, उस कोने में रखिए आपके पसंद के कप, कुछ फ्लेवर्ड टी या कॉफी, ताकि जब भी आपका मन करे आप वहीं बैठकर अपने साथ एक प्याली सुकून की पी सकें। दीवार पर लगी हो आपकी पसंदीदा तस्वीरें, वो लम्हे जो आपको मुस्कुराने की वजह देते हैं, परिवार, दोस्त या आपके अपने खूबसूरत पल, एक आरामदायक कुर्सी, पास में आपके पसंदीदा किताबें, एक डायरी, सुबह की चाय उसी कोने में बैठकर पीजिए, या फिर दिन भर की थकान के बाद कुछ पल वहीं खुद से बातें कीजिए। आप वहां पे लिख सकते हैं या फिर चुपचाप बैठकर अपने विचारों को महसूस कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटी सी जगह आपको सबसे ज्यादा सुकून देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कोना नहीं है, ये आपका अपना सेफ स्पेस है जहाँ आप खुद को समझते हैं, संभालते हैं और फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। याद रखिए, जब आप खुद के साथ अच्छा समय बिताते हैं तो आप दूसरों के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं।

अभी हम सुन रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म कालिया से। इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं तक, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।

0: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
3: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और ये वो समय है जिस समय का रहता है आप सबको इंतज़ार, और हम लेकर आते हैं प्रोग्राम आपकी एक ही फिल्म से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, क्योंकि आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये होता रहता है क्योंकि इतनी गर्मी है। जब इंसान इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा तो शायद हम कह सकते हैं कि हमारी जो मशीनरी है वो भी शायद बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। तो प्रोग्राम हम शुरू करें। आपको मैं बता दूं कि आज इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और एक ही फिल्म, जहाँ हम आपके लिए चुन चुन कर ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जो आपका मनोरंजन तो करती ही हैं लेकिन कुछ बातें उनके साथ ऐसी भी जुड़ी होती हैं जिनको जानने के बाद हमारा दिल ये कहता है कि आह क्या फिल्म थी। कहते हैं ना कि जिंदगी की राहों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती बल्कि हमारे दिलों में बस जाती हैं। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका दर्द हमारा दर्द बन जाता है, जिनकी मुस्कान में हमें अपनी खुशी दिखाई देती है और जिनकी अधूरी मोहब्बत हमारी आंखों को भी नम कर जाती है। तो आज के इस

में हम बात करेंगे एक ऐसी कालजयी फिल्म जिसमें प्यार, तकदीर और त्याग का एक अमर दास्तां लिखी हुई है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने गरीबी से उठकर दौलत की बुलंदियों को छू लिया, लेकिन अपने दिल की चाहत को कभी हासिल नहीं कर सका। वो फिल्म कौन सी है, ये तो आप इस गीत को सुनकर अंदाजा लगा ही लेंगे। तो इस गीत को ध्यान से सुनिएगा और जब आप अंदाजा लगा लें तो हमेशा की तरह हमें अपने मेल के जरिए जवाब भेज दीजिए। मेल आईडी IPRadioDelhi@gmail.com। फिलहाल ये गीत आप सबकी नजर।

साल था 1976। बॉलीवुड के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा के भाई कैलाश चोपड़ा एक फिल्म देवदास बनाना चाहते थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा को बतौर डायरेक्टर साइन कर लिया। प्रकाश मेहरा को कहानी को मॉडर्न तरीके से वो चाहते थे कि इस कहानी को वो मॉडर्न तरीके से बनाए, लेकिन मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में ये फिल्म बंद हो गई। प्रकाश मेहरा ने देवदास की कहानी को अपने ही अंदाज में लिखा। उन्होंने राखी को एक पारो का नया रूप दिया, रेखा को चंद्रमुखी बना दिया और नाम दिया जोहरा। कहानी के हीरो का नाम था देवदास, जिनकी जगह लिखा नाम दिया गया सिकंदर। फिल्म का टाइटल हो गया मुकद्दर का सिकंदर। 27 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा, विनोद खन्ना, राखी लीड रोल में थे। फिल्म की स्टोरी विजयकांत शर्मा और स्क्रीन प्ले विजय कौल और डायलॉग लिखे थे कादर खान ने। म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था और गीतकार थे अनजान जी। प्रकाश मेहरा ने फिल्म का एक गाना जो अभी अभी आपने सुना, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, जिसे किशोर कुमार और लता दी ने गाया था, ये गाना यमन कल्याण राग पर बेस्ड था। मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म में वैसे तो 6 गाने हैं, लेकिन हर गाना एक से एक है। और भी बहुत सारी जानकारी, फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत।

वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। सिकंदर के रूप में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना विशाल आनंद के किरदार में थे, राखी कामना के रूप में थी, रेखा जोहराबाई के रूप में थी, रणजीत जेडी के रूप में थे, अमजद खान दिलावर और निरूपा राय फातिमा के रूप में नजर आई थी। इनके अलावा श्रीराम लागू, गोगा कपूर, राम सेठी, दरवेश बाबा, कादर खान, ये सब ने अपनी उपस्थिति इस फिल्म में दर्ज कराई थी और इस फिल्म ने वो कामयाबी हासिल की जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। जी हाँ, मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म में हम आपको बता रहे थे कि 6 गाने थे, 2 गाने जो थे ओ साथी रे और मुकद्दर का सिकंदर, इनके 2-2 वर्जन हैं। एक और सबसे दिलचस्प बात थी कि ओ साथी रे इसमें जो किशोर कुमार ने गाया है एक और दूसरी बार गाया है आशा भोसले ने, और ओ साथी रे फिल्म की जो शुरुआत होती है उसमें राखी पर ये गाना पिक्चराइज किया जाता है और राखी के बर्थडे पर ये खाना बजता है जब अमिताभ बच्चन उनको गुड़िया देते हैं। अब दूसरी बार जो गाना होता है वो अमिताभ बच्चन जी गाते हैं तो स्टेज पर उनकी किशोर कुमार की आवाज़ सुनाई देती है और ये दोनों ही गाने जो थे वो फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी इनको मिला था और ये गाने एक तरीके से कह सकते हैं कि टूटे दिल आशिक के दिल की, जो टूटे हुए जो आशिक होते हैं दिल टूटे हुए उनकी दिल की ये पहली पसंद ये गाने थे। और ओ साथी रे गाना जब शुरू हुआ था तो अमिताभ बच्चन साहब को स्टेज पर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक कहानी सुनानी होती है, वो सीन 16 पेज का था और ये लिखे थे कादर खान ने। जब अमिताभ बच्चन ने 16 पेज का ये सीन देखा तो वो चौंक गए, बोले कि इतना लंबा सीन मैं नहीं कर पाऊंगा। कादर खान जी को बुलाया गया, अमिताभ ने उनसे कहा कि आपने तो मुझे पूरी किताब दे दी है, पूरी किताब लिख के दे दी, मैं इसको कैसे करूंगा। कादर खान ने पूरा सीन सुनाया, अमिताभ जी ने उसे रिकॉर्ड कर लिया और यही सीन इतिहास बन गया। तो जब इस गीत की बात हो रही है तो हम आपको अब यही गीत सुनवाते हैं।

सिकंदर एक अनाथ लड़का है जो बचपन से ही समाज की उपेक्षा और तिरस्कार झेलता है। कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए वो बड़ा होकर एक सफल और अमीर इंसान बन जाता है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी रह जाती है जिसे धन दौलत भी पूरा नहीं कर पाती, और वो कमी होती है प्यार। सिकंदर बचपन से कौशल्या से प्रेम करता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। दूसरी ओर तवायफ जोराबाई सिकंदर से बेपनाह मोहब्बत करती है, मगर सिकंदर का दिल कहीं और बसा होता है। प्यार, त्याग और गलतफहमियों के इस त्रिकोण में कहानी आगे बढ़ती है और अंत में दर्शकों को भावुक कर जाती है। फिल्म का संगीत आज भी बहुत लोकप्रिय है और इसके गीत कहानी की जो गीत हैं वो कहानी की आत्मा बनकर उभरते हैं। ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से शामिल रही। फिल्म में रेखा ने जो किरदार निभाया था जोराबाई का, वो आज भी उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ अभिनय में गिना जाता है। प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने कई सफल फिल्में दी, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की भावनात्मक कहानी और संगीत ने इसे भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया था, और ये फिल्म उस दौर में कई सिनेमाघरों में लगातार महीनों तक चली थी।

फिल्म के मशहूर गीत सबसे पहले जो हमने आपको सुनवाया था सलामे इश्क मेरी जान, इसकी शूटिंग के दौरान रेखा ने जोहरा बाई के किरदार में इतना शानदार अभिनय किया था कि सेट पर मौजूद लोग उनके एक्सप्रेशन और अदाओं को देखकर दंग रह गए थे। कहा जाता है कि निर्देशक प्रकाश मेहरा को ये दृश्य इतना पसंद आया कि इन्होंने कई हिस्सों को पहले ही टेक में ओके कर दिया था। एक और रोचक बात मैं आपको बताती हूँ, फिल्म के कई भव्य सेट जो बनाए गए थे वो पुराने लखनऊ की नवाबी संस्कृति का एहसास देने के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। जोहराबाई की जो कोठी थी उसके सेट पर की गई बारीकी से जो बारीक कारीगरी थी और जो सजावट थी वो इतनी नेचुरल थी, इतनी वास्तविक थी कि फिल्म देखने पर पूरा नवाबी माहौल जो था वो फील होता था। इसी तरीके से फिल्म के जो क्लाइमेक्स था उसकी शूटिंग बहुत भावनात्मक माहौल में हुई थी। जब अमिताभ बच्चन अपने अंतिम दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे तब सेट पर मौजूद कई कलाकार और कई टेक्नीशियन सच में भावुक हो गए थे क्योंकि फिल्म की कहानी का जो असर था वो सेट की यूनिट पर भी पड़ा था। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म एक फिल्म नहीं थी बल्कि भावनाओं का ऐसा कारवां है जो आज भी समय की धूल से अछूता है। आपके ढेर सारे संदेश भी आ रहे हैं, उनको मैं शामिल करूंगी फिलहाल इस गीत के साथ।

आज ढेर सारे संदेश हैं जिन्हें मैं संक्षेप में पढ़ूंगी क्योंकि वक्त कम है और संदेश बहुत सारे हैं, तो माफी भी चाहूंगी। विजय वीरंगांव गुजरात से अजीत भा अफसर प्रमीला जी जुड़े हुए हैं। बटिंगा रोड मंडी डावली से राजेंद्र नारंग अंजू मोहित और तानिया जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन कौशल है हेमलता और डिम्पल जी जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है सतीश अनेजा विमल जी का चंडीगढ़ से आया हुआ है। देवशंकर तामुरी अजय देव तुषार देव रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालू छत्तीसगढ़ से है। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ हैं। अनिल तामरकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर दिलीप के साथ शिवाजी चौक कटनी से हीरामणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से हैं। सुदर्शन मुखिया नीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी आरती लवली जी हमारे साथ हैं। जगाराम साहू जी बबलू साहू नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। गोविंद वैश्य दिव्या सुमन कौशल परिकृतिका तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मसूर हसन हमारे साथ हैं। कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से जुड़े हुए हैं। डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हैं। साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है सौरा श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान जी का। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोर्ड निखिल कांगड़ा जी हैं। और गोल मार्केट दिल्ली से सुनीता यादव सीमा नेहा प्रियंका जी हैं। पहाड़गल मुल्तानी ढांडा से निर्मोहन उषा मोहन टीलू नायक जी हैं। और ये संदेश हमारे पास बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद नेहा दीपक जी का आया है। परमीजीत कौर दिलवाग दिलजोत जी पंजाबी वाग दिल्ली से हैं। मोहम्मद सैद अवासी निगत परवीन श्रीनिवास सरफराज पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार जी हमारे साथ हैं। अगला संदेश हमारे पास पहुंचा है बबलेश पवार जी का। ढेर सारी जानकारी के साथ पी एस नवानकर निर्मला जी नरवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं। सुरेश राठौड़ मंजुला जी हमारे साथ गांधीनगर गुजरात से जुड़े हुए हैं। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाघव जी जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन पीटीआई संसद मार्ग से जुड़े हुए हैं। कनाट प्लेस से माहिरा मलिक हिवा जी हैं। फाजिका पंजाब से भूषण खेड़ा विशाल खेड़ा जी हमारे साथ हैं। ताज मोहम्मद जी हमारे साथ हैं। संजय साहू पुचियाल कला दुर्ग से हैं। भागवत वर्मा जी शांति देवी दतरेंगी से जुड़े हुए हैं। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी बबीता जी हमारे साथ हैं। गाँव फरासी जार से राजकुमार डूंडी जी हमारे साथ हैं। संजय डिंगिया अपार डिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का हम ढेर सारा आभार व्यक्त करते हैं। और चलने से पहले हम आपसे इतना ही कहेंगे कि मुकद्दर का सिकंदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भावनाओं का ऐसा सफर है जो हर पीढ़ी के दर्शकों को छू जाता है। इसकी कहानी संगीत और कलाकारों का अभिनय इसे हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्मों में शामिल करता है। कभी कभी इंसान मुकद्दर से तो जीत जाता है लेकिन अपने दिल से हार जाता है और शायद यही सिकंदर की कहानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस फिल्म को जरूर देखा होगा और अगर अभी तक नहीं देखा तो हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वक्त निकालिए उस फिल्म को जरूर देखिए। फिलहाल अब वक्त हो रहा है कि मुझे आपसे अनुमति लेनी है, तो अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। 2:30 पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम ए की फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे पदम पुरस्कार प्रदान करेंगे। सर्वोच्च अदालत ने नीट परीक्षा विच वार वार हो रही गलतियां ते चिंता प्रगट की। कहा, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद तो सबक नहीं लिया। क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग कल नवी दिल्ली च होगी। पेट्रोल की कीमत विच 2.61 रुपए और डीजल की कीमत 2.71 रुपए प्रति लीटर का वाधा होया। अते मौसम विभाग वालों दिल्ली च अगले 3 दिनों दौरान लू चलन बारे येलो अलर्ट जारी। पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भी लू की स्थिति बनी रहेगी। ते हुण खबरां विस्थार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे 66 खास हस्तियां नूं साल 2026 लई पदम पुरस्कार प्रदान करनगे। उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृहमंत्री अमित शाह भी इस समारोह च मौजूद रहनगे। अज 2 पदम विभूषण, 6 पदम भूषण अते 58 पदम श्री पुरस्कार प्रदान कीते जाणगे। राष्ट्रपति ने साल 2026 लई 131 पदम अवार्डां नूं मंजूरी दे दित्ती है। इन्हां विच 5 पदम विभूषण, 13 पदम भूषण ते 113 पदम श्री पुरस्कार शामिल ने। बाकी पदम पुरस्कार समारोह दे दूजे दौर च बाद विच प्रदान कीते जाणगे। पदम पुरस्कारां दा ऐलान हर साल गणतंत्र दिवस ते कीता जांदा है। इह वकारी नागरिक सम्मान, कला, जनहित ते समाज सेवा, साहित्य, सिक्ख्या, विज्ञान अते इंजीनियरिंग, व्यापार ते सनअत, दवा ते खेडां दे खेतरां च शानदार प्राप्तियां लई दित्ते जांदे ने। असाधारण ते शानदार सेवावां लई पदम विभूषण, विशेष सेवा लई पदम भूषण ते किसी भी खेतर च महत्वपूर्ण सेवा लई पदम श्री नाल सम्मानित कीता जांदा है। पदम

0: वज़ीरे ख़ारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीरे ख़ारजा पेनी वांग, जापान के वज़ीरे ख़ारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वज़ीरे ख़ारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीरे ख़ारजा डॉ एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैन अल-अक़वामी उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल है और ये भारत बैनुल काहिल खित्ते में अमनो सलामती और इस्तेहकाम पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक क्लीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मस्कूरा ग्रुप के मौजूदा सदनशी होने के नाते इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। साल 2024 में अमरीका में वेलमिंगटन में क्वाड की गुज़श्ता सरबराह मीटिंग में ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल खित्ते में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसत देने की खातिर अहम इकदामात का ऐलान किया था। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने में खास तौर पर दिलचस्पी के हामिल हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए।
1: We must always be clear.
2: हमें दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए और इसीलिए दहशतगर्दी से निपटने के मामले में हमारा इश्तराक इंतहाई अहम है। आवाम से आवाम के दरमियान रابطے भी हमारे ताल्लुकात में खसूसियत के हामिल हैं क्योंकि इनसे दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी समझबूज में मदद मिली है और इन्हें एक खास मकाम हासिल है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान के इनकाद में बार बार होने वाली कोताही पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये बात मायूस कुन है कि इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने पेपर लीक होने के पहले के तनाजे से कोई सबक हासिल नहीं किया। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी और मरकजी जांच ब्यूरो CBI से जवाब तलब किए हैं। इन दरख्वास्तों में मेडिकल दाखिला इम्तिहान के इनेकाद के लिए मौजूदा एजेंसी की जगह एक ज्यादा मजबूत और खुद मुख्तार इदारा कायम किए जाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करके उन सिफारिशात पर अमल दरामद की तफसीली जानकारी फराहम करे जो इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन की सरबराही वाली कमेटी ने मस्कूरा एजेंसी के कामकाज को असरनौ तरतीब देने के लिए पिछले साल की थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आसाम सरकार ने आज रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया। मस्कूरा बिल में एक से ज्यादा शादियां करने पर पाबंदी आयद करने और लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की बात कही गई है। मस्कूरा बिल में कहा गया है कि इसका इतलाक आसाम में रहने वाले किसी भी दर्ज फहरिस्त कबीलों पर नहीं होगा। शादी के लिए मस्कूरा बिल में मर्दों की कम से कम उम्र 21 साल और ख्वातीन की 18 साल तय की गई है। कानूनी हकूक के तहफ्फुज के लिए बिल में शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की तजवीज है जो गुजारे भत्ते, मीरास और शरीक हयात के लिए दीगर कानूनी तहफ्फुज के ताल्लुक से अहमियत का हामिल रहेगा। रियासत के काबीना वजीर अतुल बोरा ने वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ऐवान में यकसां सिविल कोड आसाम बिल 2026 पेश किया। इस तरह यह बिल पेश करने वाली शिमाल मशरक में आसाम पहली रियासत बन गई है जबकि मुल्क में बीजेपी की सरकार वाली ये ऐसी तीसरी रियासत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज रहें। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
3: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: अजीम इनकलाबी शख्सियत रास बिहारी बोस के यौम पैदाइश पर वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि रास बिहारी बोस ने अपनी गैर मामूली तंजीमी सलाहियत के जरिए आजादी की जद्दोजहद में एक नई तवानाई पैदा की।

0: and Satna. These five districts have been put on red alert. Yesterday, Khajuraho and Nogaon turned out to be the hottest spot in the state, with temperatures hitting 45.8 degrees Celsius. In the state capital Bhopal, it was 42.7 degrees, Gwalior recorded 44.1 degrees, and Jabalpur saw 43.3 degrees. The weather department says the heat is only going to get worse between May 25th and 28th, and there is no sign of any relief till 31st May. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
1: Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual five-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.2% higher during afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the U.S.-Iran conflict. The Sensex surged 944 points to 76,360, while the Nifty climbed 270 points to 23,989 when reports last came in. The Norway Chess 2026 kicks off in Oslo today with round one matches. The tournament will officially begin at 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
3: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
4: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की

0: 29वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद

0: से विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन आईएयू एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस फिल्मकार की जिसने प्रेम, रिश्तों और परिवार की कहानियों को भव्यता और भावनाओं के साथ बड़े पर्दे पर पेश किया, जिनका आज 25 मई को जन्मदिन भी है। और आपको थोड़ी सी हिंट ये दे दूं कि उनके पिता भी एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की थी। तो ये सितारा कौन है आपको पहचानना है, और जब आप हमेशा की तरह पहचान लेते हैं तो पता है ना आपको क्या करना है, संदेश हमें भेज देना है। हमारा मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। फिलहाल इस प्रोग्राम में प्रोग्राम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। हमारे नए श्रोता जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार मैं फिर से अपना मेल आईडी बता दूँ। हमारा मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। इस पर, इस माध्यम से आप हमारे सफर के हम सफर बन सकते हैं। तो बताइए आज हम किस सितारे को चुनकर लेकर आए हैं।

जी हाँ, इस गीत को सुनने के बाद आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस सितारे की बात कर रहे हैं। आज यानी कि 25 मई 1972 को जन्म हुआ था करण जौहर का। आपके संदेश वैसे बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पहचान गए थे, और क्यों ना पहचाने, इनके जो गाने हैं वो इस तरीके के गाने हैं कि जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। करण जौहर, जिनका बचपन फिल्मी माहौल में बीता था, क्योंकि इनके पिता का नाम था यश जौहर, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना की थी। करण जौहर ने मुंबई के ग्रीन लॉन्स स्कूल और एचआर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उन्हें फिल्मों, संगीत और कहानी कहने का बड़ा शौक था। करण जौहर ने फिल्म जगत में शुरुआत अभिनेता के रूप में की थी, और 1995 की एक ऐतिहासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, याद है ना आपको ये फिल्म। इस फिल्म में एक छोटे से किरदार में वो दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया, और 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है। इस फिल्म ने रातों रात उनको सफल निर्देशकों की कतार में लाके खड़ा कर दिया, और फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, और आज भी इसे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में गिना जाता है। तो आप करण जी के बारे में, या फिर इनकी जो फिल्में हैं उनमें से आपको कौन सी ज़्यादा फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है, आप हमें अपने संदेशों के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं इन्हीं की एक और फिल्म जिसका अभी हमने जिक्र किया, कुछ कुछ होता है का वही टाइटल सॉन्ग।

आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम एक ही कलाकार, और आज हम चुनकर वो सितारा लेकर आए हैं जिन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्म दी, जिनका आज जन्मदिन भी है, करण जौहर। जी हाँ, करण जौहर को केवल फिल्म निर्देशक ही नहीं बल्कि एक सफल टीवी होस्ट के रूप में भी जाना जाता है। उनका चर्चित चैट शो कॉफी विद करण वर्षों से दर्शकों का पसंदीदा रहा है। हो सकता है कि आपने भी इस शो को कई बार देखा हो। करण जौहर को कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है।

फिल्म राजी का ये खूबसूरत सा दिल को छूने वाला गीत हर किसी की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। और आपको बता दें कि करण जौहर, जिन्होंने एक से एक फिल्में दी थी हिंदी सिनेमा में, एक सफल निर्देशक और निर्माताओं में वो शामिल हैं। और इसके साथ ही उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी हैं, शायद आप जानते हैं, और हो भी सकता है कि शायद आप नहीं जानते हो। तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि इनका असली नाम है राहुल कुमार जौहर। ये जुड़वा बच्चों यश और रूही के पिता हैं। 2004 में इनके पिता यश जौहर के निधन के बाद उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली और धर्मा प्रोडक्शन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हाल ही के वर्षों में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के विस्तार के लिए कई व्यावसायिक फैसले भी लिए हैं। तो देखते हैं कि अब इनके पिटारे में से और कौन कौन सी फिल्में निकलने वाली हैं। फिलहाल तो इन्हीं की एक खूबसूरत सी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं,

किरण गांव गुजरात से जीत भापसर प्रमिला भापसर जी जुड़ चुके हैं। सुदर्शन मुखी नीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार जी हैं। और अगला जो संदेश है पहुँचा है ये इंद्रभान सिंह ने पहुँचाया है हम तक। कहाँ से लिखी ये जगह इन्होंने नहीं लिखी, शायद जल्दी जल्दी में रह गया है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक अफरीन कौसल मोहम्मद जी हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा जी हैं। हीरामणि वर्मा तदरेंगी भाटापारा से हैं। नरवेश्वरनगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस मानकर निर्मला विशाल और मलकापुर से नारायण इंगले सोपान ताइडे जी हैं। पहाड़गंज मुलती ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन और टिल्लू नायक जी हैं। कैथल हरियाणा से मधु नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी प्रमोद कुमार डूंडी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम इंदिरा सार्थक सचिन नंदिनी शर्मा जी का है। मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शनवास सरफराज फरदीन सुहान अरजान आवास और परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। संजय डिगिया नमन डिगिया पार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन है हमारे साथ में। अगला संदेश हमारे पास पहुँचा है शंकर जाधव जी का और मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी कुछ और संदेश हैं जिनको हम शामिल करेंगे कुछ देर बाद। फिलहाल इस गीत को आप सुन ही रहे हैं। तो दोस्तों सपनों को रंग देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन करण जौहर ने अपनी जिंदगी के जरिए प्यार दोस्ती और रिश्तों को ऐसे रंग दिए कि वे करोड़ों दर्शकों के दिलों का हिस्सा बन गए। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं कि वे आने वाले वर्षों में भी हमें इसी तरीके से यादगार कहानियां देते रहेंगे, यादगार फिल्में देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है कि आपसे अनुमति ले लूं, जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सितारे के साथ। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है दोपहर के 3 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरुशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मवंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा

0: ओडिशा से देश देवदास जी का,
1: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े,
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी।

0: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्धशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्धशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंको जनाब।
7: अरे अरे, ये क्या हुआ? अरे
8: बच्चों बच्चों बच्चों,
9: फट नहीं जाओ,
8: सभी छोड़ो, पीछे हटो,
9: जमीन पर लेट जाओ,
8: वहां निकल जाओ।
2: साथियों,

0: हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
2: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
4: सही में
2: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
5: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
5: Sir.
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
5: सर।
3: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
5: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
5: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
5: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
5: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
6: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
7: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
6: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
8: जी साहब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
5: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
7: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।

0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
1: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर!
1: सर, ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर!
1: सर, ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर!
1: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया, भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनि अंकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो।

0: निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
5: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: श्रोताओं, दिन के 3:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।
1: सामीन की खिदमत में सरफराज आलम का पुरखलूस आदाब। रूबरू प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। सामीन, ये खूबसूरत शेर जो अभी आपने सुना, यह शेर था दाग दहलवी का, जो आज ही के दिन 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुई और 17 मार्च 1905 को 74 बरस की उम्र में हैदराबाद में वफात पाई। तो आइए आज प्रोग्राम के आगाज में दाग दहलवी की हयात व खिदमात पर एक सरसरी नज़र डालते हैं। सामीन, दाग दहलवी उर्दू ज़बान के उन शायरों में शामिल हैं जिनके अशार अवाम की ज़बान पर राइज हैं। उनके बेशुमार अशार लोगों को आज भी याद हैं, जैसे यह शेर समात करें। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सामीन, दाग के ज़माने में ज़बान की दो सतहें थीं, एक इल्मी और दूसरी अवामी। गालिब इल्मी ज़बान के नुमाइंदे थे और दाग की शायरी अवामी थी, वो अवाम से गुफ्तगू करते थे। दाग फितरी शायर थे और उनके मौजूआत में अवाम व खवास दोनों की दिलचस्पी ज़्यादा होती है। उनका यह शेर मुलाहिज़ा करें। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। समीन, दाग की ज़बान की दाद तमाम अहले इल्म देते हैं। सादगी उनकी नज़र में ज़बान का हुस्न है। उन्होंने शायरी को पेचीदा तरकीबों, फारसी और अरबी के सकील अल्फाज से बचाया। उनकी शायरी में सीधी सादी ज़बान के साथ सलासत व रवानगी भी है। उन्हें अपनी ज़बानदानी का एहसास भी है। उनका यह शेर देखें। नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ऐ दाग यारों से कह दो, कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। सामीन, आइए अब चलते हैं आज के असल प्रोग्राम रू बरू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम किसी अदबी, समाजी या किसी माशी शख्सियात से आपको रूबरू करवाते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनसे बात करें,

0: वो अनाउंसर थे। बाद में उसी वक्त मुजीब सिद्दीकी कानपुर से आ गए, उसके बाद दिल्ली से एस एम शफीक
1: जी,
0: कानपुर से इकबाल वारसी, इस तरह से ये बहुत खूबसूरत आवाज़
1: है, एक कहकशां,
0: एक कहकशां बन गया, स्टाफ का कहकशां बन गया। उसके बाद जो दूसरे लोग थे जैसे सलाम मछी शेरी
1: जी
0: अदबी प्रोग्राम देखते थे, के नैयर, उसके बाद उस्ताद हफीज़ अहमद ख़ान जो म्यूज़िक देखते थे, और महमूद हाशमी जो करंट अफेयर्स देखते थे, रुबै रिजवी
1: जी।
0: तो इस तरह से ये लोग आते चले गए, अमी खल्फी साहब
1: जी,
0: तो ये पूरा एक बहुत ही मज़ा आता था काम करने में।
1: अच्छा,
0: ड्रामे में अनवर ख़ान साहब
1: जी।
0: अच्छा, अनवर ख़ान साहब से पहले कुलदीप अख्तर साहब थे, और जब मैंने ज्वाइन किया जब कुलदीप अख्तर साहब थे और वो रिटायर होने वाले थे।
1: तो आपने प्रोडक्शन का जो काम है वो
0: जी
1: वो किनसे सीखा, जो आप जिनको उस्ताद मानते हैं?
0: वो मैंने कभी स्टूडियो नहीं देखा था, कभी रेडियो नहीं देखा था, एक तस्वुर था रेडियो का।
1: जब आपका रेडियो में,
0: लेकिन जब
1: अपॉइंटमेंट
0: रेडियो
1: हो
0: में
1: गया
0: आया तो मैंने कोशिश की कि मैं हर शोबे में मालूमात हासिल
1: नहीं
0: करूं।
1: तो जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई तो किस तरह का काम होता था और किस तरह की मशीनें थी?
0: ये मशीनें हमारे यहाँ एक होता था CRR, सेंट्रल रिकॉर्डिंग रूम, वहाँ एक हॉल था, उसके अंदर जगह जगह मशीनें लगी, दो दो तीन तीन मशीनों के सेट लगे हुए थे। वहाँ मैंने काम शुरू किया, मुख्तलिफ प्रोग्राम, जो मेरा पहला प्रोग्राम था जो मैंने फीचर था वो, उसका नाम था फुटपाथ से फुटपाथ तक,
1: फुटपाथ से फुटपाथ तक।
0: हाँ, ये तमाम जितने बाहर बेचारे जो काम करते हैं, रोजगार
1: जी
0: करते हैं, छोटे छोटे रेड़ी वाले हैं, खंचे वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सब के इंटरव्यूज़ पर बेस्ड था
1: जी,
0: उनके तजर्बात पर बेस्ड था, उनकी मुश्किलात का सारा था। तो वह मैंने प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम फुटपाथ से फुटपाथ तक, तालिबन 67 के आसपास की बात।
1: तो इसकी रिकॉर्डिंग्स के लिए भी आप बाहर जाते होंगे,
0: हाँ,
1: स्टूडियो से बाहर?
0: रिकॉर्डिंग के लिए
1: जी।
0: उस जमाने में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी ज़्यादा थी नहीं, एक वर्टिकल टेप रिकॉर्डर होता था, वर्टिकल टेप रिकॉर्डर छोटा था, 3-4 मिनट उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते थे, सेल्स होते थे वो लेके जाते थे, उससे हम रिकॉर्डिंग करते थे। तो उसको फिर आकर अपने यहाँ कंट्रोल रूम में, उसमें CRR में उसकी डबिंग करते थे। अनाउंसर हमारे उस वक्त थे एस एम शफीक
1: जी,
0: तो मेरे जितने भी प्रोग्राम हैं उसकी जो वॉइसिंग की है वो एस एम शफीक साहब ने की है
1: जी,
0: और बहुत से प्रोग्राम हमने साथ मिलके बनाए हैं, उसमें गीतों मेरी कहानियाँ बहुत बनाई हैं, तो हम दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर हो गई थी यहाँ पर।
1: अच्छा सरफराज साहब, जिस स्टूडियो में बैठे हैं इसकी जो दीवारें हैं ये आपके आशना हैं?
0: जी बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: आप ये बताइए कि ये स्टूडियो जो आप बापू स्टूडियो के नाम से जाना जा रहा है, इससे पहले ये स्टूडियो कैसे जाना जाता था, और क्या कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी होते थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, या जो आज
0: यहाँ
1: ज्यादातर
0: इंटरव्यू हुआ करते थे
1: जी?
0: पता चला था कि गांधी जी भी जब ब्रॉडकास्टिंग के लिए आए थे
1: जी,
0: तो वो इसी स्टूडियो में तशरीफ लाए थे
1: जी।
0: लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड किया जिन लोगों को, उसमें बाबू जगरीब राम
1: जी,
0: एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए बाद में पीवी नरसिम्हा राव
1: जी,
0: उनको मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया। उसके अलावा जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आते थे, अदीब आते थे, उनका इंटरव्यू भी यहाँ किया है, जैसे प्रोफेसर आलिम मसरूर साहब
1: जी,
0: शमीम हनफी साहब उस ज़माने में अलीगढ़ में ही थे, डॉक्टर शमीम हनफी
1: जी,
0: ये सब लोग, उनको इसी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया।
1: अच्छा, आपने जिक्र किया अनवार साहब का
0: जी,
1: ड्रामे के हवाले से,
0: अनवर साहब
1: तो वो जब ड्रामा प्रोडक्शन होता था
0: जी
1: तो आप यहाँ पर तो एक मजमा जैसा रहता होगा, क्योंकि
0: अरे जबरदस्त
1: जो किरदार आते थे वो लाइव परफॉर्मेंस देते थे सारा कुछ।
0: एक वाकया सुनाता हूँ
1: जी, बताइए।
0: एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग थी, उसमें नाजरा बब्बर रोल कर रही थी, मेन रोल
1: जी,
0: अनवर खान पैनल पे थे, मैं उनके साथ था। तो नाजरा बब्बर एक लफ्ज़ को जिस तरह अनवर खान चाहते थे उस तरह अदा नहीं कर पा रहे थे। नाजरा ने कहा कि खान साहब फिर आप ही बता दीजिए। तो अनवर खान साहब माइक्रोफोन पे पहुंच गए, मुझसे कहा रिकॉर्ड करो। उन्होंने एक ही जुमला
1: जी
0: 10 बार रिकॉर्ड किया अलग अंदाज में, और फिर नाजरा को बुला के कहा ये सुनो, ये जो 5 बार है मुझे ये चाहिए,
1: मतलब एग्जाम्पल सेट करके
0: हाँ
1: फिर बताना कि ऐसा हमें चाहिए,
0: इस तरह चाहिए
1: जी।
0: तो नाजरा बब्बर रोने लगी थी।
1: अच्छा, एक बताइए कि जिस तरह से हमारा रेडियो ड्रामा प्रोडक्शन है वो करीब करीब 28 मिनट के आसपास हम प्रोडक्शन करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सीरीज होती है, कोई ऐसी सीरीज जिसमें आपको 6 महीने लग गए हों, साल लग गई हो प्रोडक्शन में?
0: एक सीरीज शुरू की थी यहाँ पर दानिश इकबाल की
1: जी,
0: वो गैर मुल्की ज़बानों का तर्जुमा था कहानियों का, उसमें मुझे मज़ा भी आया काम करने में और वक्त भी लगा, काफ़ी लगा।

0: आकाशवाणी की जो जुबान है वो एक बेंचमार्क है।
1: रेडियो जो है, रेडियो ने हमको बोलना सिखाया, हमको बताया कि कहाँ रुकना है, कहाँ कॉमा होना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए
0: जी,
1: और जिस जिस लफ्ज पर हमें जोर देना है उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। ये सारी जो जबान की तहजीब है वो हमें रेडियो से मिली।
0: अच्छा सरफराज साहब, एक चीज बताइए, जब आप प्रोडक्शन करते थे ड्रामा का
1: जी,
0: कई बार होता है स्क्रिप्ट में भी बदलाव लाना पड़ता है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट जिसने दी है तो जरूरी नहीं कि रेडियो के हवाले से वैसी स्क्रिप्ट तैयार करके दी हो। तो ये क्या जो उस वक्त के प्रोड्यूसर्स थे
1: जी
0: वो अलाउ करते थे कि आप उनकी हेल्प करें और उसमें चेंज लाने के लिए?
1: ऐसा हुआ, बारहा हुआ है। मेरा वास्ता कुलदीप अख्तर साहब से ज़्यादा नहीं पड़ा था, क्योंकि रिटायर होने वाले थे, उसमें अनवर खान साहब के साथ ज़्यादा रहा हूँ मैं। अनवर खान साहब के बाद मुमताज़ शकीब है जयपुर से। मुमताज़ शकीब में ये कमज़ोरी थी
0: जी,
1: वो उस कमज़ोरी को की वजह से कभी कभी जुमले में, डायलॉग में फ्लो नहीं आता था, लफ्ज़ को इधर उधर करना पड़ता था।
0: जी
1: इसके मुमताज़ शकीब का ही होता था
0: जी,
1: लेकिन उसमें तब्दीली और इसलाह जो है मुझे करनी पड़ती थी। ये हुआ
0: असर लाने के लिए
1: जी।
0: अच्छा एक चीज़ सरफराज साहब, आपने उर्दू मजलिस भी देख लिया, उर्दू सर्विस में भी काम करके देख लिया, कोई ऐसी शख्सियत जो बाहर से आई हमारे पास जिनको हम एज ए टॉकर बोलते हैं, जिसने आपके ऊपर एक असर छोड़ के गए, जिसने आपके ऊपर एक असर छोड़ा कि मुझे भी ये बदलाव लाना है अपनी शख्सियत में, मैं अपने आप को इस तरह से अपने आप को डेवलप करना है, कोई ऐसा मतलब बाकी आपके साथ?
1: इस वक्त मेरे जहन में नहीं है।
0: और रेडियो में कोई ऐसी शख्सियत रही जो जिनसे आपने सीखा?
1: हाँ ऐसे कई लोग हैं,
0: बताइए।
1: जैसे चिरंजीत
0: जी,
1: उनका बहुत मशहूर एक सीरियल था ढोल की पोल,
0: ढोल की पोल
1: आपने सुना होगा 1962 के आसपास। फिर उसके बाद शरद चंद्र जी, उनसे मैंने टाइमिंग सीखी, टाइमिंग की बहुत इम्पोर्टेंस होती है
0: जी,
1: टाइमिंग उनसे सीखी शरद चंद्र से। अब तो खैर वो नहीं रहे। उसके बाद दीना भाई, दीनानाथ
0: जी,
1: तीन कैरेक्टर ऐसे थे उर्दू ड्रामे के, उर्दू ड्रामों में जिसमें सर्वसंजित, दीनानाथ और ब्रजेंद्र मोहन, खलीफा छद्दू वगैरह ये क्या करते थे, और भाई मुमताज
0: जी
1: इस तरह के कैरेक्टर करते थे। ये लोग जो थे इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। उसके बाद आखिरी दौर जो है वो एस ठाकुर
0: जी,
1: ये डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर ड्रामा थे, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और ये जो थे वो, उनकी ख़ास बात ये थी कि जो इफ़ेक्ट्स थे, साउंड इफ़ेक्ट, उसको वो स्टूडियो में लाइव करना चाहते थे। लाइव एक वो प्रोग्राम कर रहे थे महाभारत
0: जी
1: ड्रामा,
0: आजकल तो सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, मगर उस वक्त तो
1: उस ज़माने में नहीं थे
0: बनाए जाते थे उस वक्त जी।
1: तो उसमें एक इफेक्ट था सुदर्शन चक्र
0: जी,
1: उसका इफेक्ट निकालना था और कई दिन हो गए वो हमको वो इफेक्ट जो है वो तैयार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं जैसे ही ब्रॉडकास्टिंग हाउस में दाखिल होने लगा तो मुझे टीम का एक टुकड़ा नजर आया
0: जी,
1: सड़क पे पड़ा हुआ, उल्टा पड़ा
0: हुआ, मतलब जहन में रहता होगा कि इफेक्ट चाहिए तो कहाँ से मिलेगा ये इफेक्ट जी।
1: टुकड़ा निकाला, उसको लिया, अंदर आकर कील से उसमें दो सुराख किए बराबर
0: जी,
1: उसमें धागा पिरो कर उसको ऐसे घुमाया
0: तो आवाज आई,
1: खींचा तो उससे जो आवाज निकली घूम हुई तो वो हमारे काम आई सुदर्शन चक्र के इफेक्ट के लिए
0: जी।
1: एक और इफेक्ट बहुत मुश्किल था, एक ड्रामा था जिसमें कितने ही खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए,
0: अच्छा,
1: लेकिन फिर भी रूह आती है, एंटर होती है और मर्डर हो जाता है,
0: और रेडियो भी इस चीज़ बताना,
1: रेडियो पर। तो अब ये किस तरह किया जाए, कभी एक रूह आती है और एंटर होती है और अगर वो मर्डर हो जाता है। तो हम यहाँ स्टूडियो वन है, इसमें एक बहुत बड़ा नक्कारा रखा हुआ था
0: जी,
1: अब नहीं है,
0: अब
1: पहले नक्कारा रखा हुआ था और उसके जो स्ट्राइकर थे वो दीवार पर लगे हुए थे एक क्रॉस के। मैं उधर से गुजर रहा था तो मेरी नज़र उस पर पड़ी, तो मैं टेप रिकॉर्डर टेप ले आया ऊपर से, टेप स्कूल में जाकर उसको ऑन कर दिया रिकॉर्ड के लिए। स्टूडियो में जाकर उसके ऊपर मैंने स्ट्राइक किया,
0: अच्छा,
1: उस पर स्ट्राइक किया वो रिकॉर्डिंग हो गई, उसके वाइब्रेशन सारे आ गए
0: जी जी जी।
1: जब मैंने उसे इस्तेमाल किया है तो वो स्ट्राइक को हटा दिया,
0: अच्छा,
1: सिर्फ वाइब्रेशन लेकर उसका इस्तेमाल किया, उससे ऐसा लगा उसमें चीख
0: जी जी जी,
1: उससे ऐसा लगा कि वो रूह आ रही है और वो मर्डर हो गया।
0: अच्छा सरफराज साहब, जब ड्रामा कहते हैं कि एक कंप्लीट आर्ट है रेडियो की, इसमें मौसिकी अपनी एक अलग रोल अदा करता है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो उस वक्त जब आपको कोई म्यूजिक का इस्तेमाल करना होता है, इफेक्ट्स वगैरह, ठीक है म्यूजिकल इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो साजिंदे खुद स्टूडियो आते थे?
1: नहीं,
0: कि आप कहीं से रिकॉर्डिंग करके आते थे फिर उसको?
1: जिस हमारे पास जो प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक है
0: जी,
1: उसमें से हमें इजाजत थी कि सिर्फ हम 15 सेकंड यूज कर सकते हैं कोई भी गाने का म्यूजिक को
0: जी,
1: वहाँ से बेच
0: लिया। मैं शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, नए नए आए गए उस टाइम, उस टाइम इतना म्यूजिक तो अवेलेबल नहीं होगा,
1: नहीं होता था जी। तो जो हमारे पास रिकॉर्डिंग थी उसी से

0: हम लेते थे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो अप्रोप्रिएट लगता था वही हम ले उसमें लेते थे।
1: तो उस वक्त जो म्यूजिक आप लेते थे टेप पे होता था कि ये ग्रामोफोन वगैरह पे?
0: टेप पर होता था
1: जी,
0: टेप पर होता था। ग्रामोफोन उस हमसे पहले का था, हमसे पहले जो था वो स्टूडियो 11 एक था, अब भी है वो स्टूडियो, अब उस पर डबिंग होती है। वो स्टूडियो होता था, ड्रामा ड्रामा स्टूडियो में हो रहा, उस स्टूडियो 11 के अंदर हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं, इफेक्ट लेके बैठे हुए हैं, कंट्रोल ड्रामे की जो आवाज़ है वो उस स्टूडियो में सुनाई दे रही है, वहाँ से वो इफेक्ट दे रहे हैं। जब उनको स्क्रिप्ट उनके पास भी है, वो वहाँ से इफेक्ट दे रहे हैं। जब महाभारत हो रहा है जैसे या रामायण हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी ड्रामे हो रहे हैं, इफेक्ट वहाँ दे। तो उस स्टूडियो का नाम ही इफेक्ट स्टूडियो रख दिया गया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: इफेक्ट स्टूडियो है ना। अनाउंसर इधर बूथ पे होता था ड्रामे के ऊपर, और इफेक्ट वहाँ से इससे प्लेबैक होते थे, और कंट्रोल रूम इसको कलेक्ट करता था।
1: सरफराज साहब, रेडियो के हवाले से जैसे हम एक तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करते हैं हम लोग, दूसरा यह है कि जब बाहर जाते हैं, बाहर कोई फंक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और वो वक्त था जिसमें आप यहाँ सर्विस में थे कि बाहर जाके रिकॉर्डिंग्स भी बहुत हुआ करती थी
0: जी, जी।
1: तो कोई ऐसा वाकया जो अपने वक्त का आपको लगता है कि हम रेडियो के हवाले से लोगों तक पहुँचाया जाए?
0: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात थी
1: जी,
0: और हम पूरी टीम लेकर अलीगढ़ पहुंचे थे। वहाँ 4-5 दिन का प्रोग्राम था
1: जी,
0: इंजीनियर्स भी थे हमारे साथ।
1: हमें अपने सामीन को बताना चाहते हैं कि अलीगढ़ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, दिल्ली के स्टूडियो से।
0: वहाँ पर हमारे सामने एक मसला आ गया
1: जी।
0: हम रोजाना दिन में रिकॉर्डिंग करते थे, शाम को एडिटिंग करके कैप्सूल बनाते थे, और उसको हाई पावर ट्रांसमीटर जो अलीगढ़ से कुछ 17-18 किलोमीटर दूर था, वो हमारी वैन का ड्राइवर लेके जाता था, वहाँ देता था, वहाँ से प्लेबैक होता था यहाँ दिल्ली में। एक दिन वो वैन जो है ख़राब हो गई। अब वहाँ कोई रास्ता नहीं था कि हम किस तरह से इसको वो करें। प्रोग्राम हो रहा था कैनेडी हॉल में, उसके बराबर में टेलीफोन का एक पुल लगा हुआ था
1: जी।
0: तो हमने एक साइकिल उस पुल के साथ लगाई, उसकी गद्दी पर खड़े हुए, टेप रिकॉर्डर कंधे पर रखा, उसको टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया, और वो दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ।
1: मतलब
0: तो वो है ना कि शो मस्ट गो ऑन।
1: यस, और ये वो कहते हैं ना कि रेडियो हो, टेलीविजन हो, या जितने भी मास मीडिया के हैं, वहाँ पे शो रुकना नहीं चाहिए, और आपको वक्त के हिसाब से करना है।
0: बिल्कुल करना पड़ता है।
1: अब ये बताइए कि जो नई नस्ल हमारे इस प्रोग्राम को सुन रही है
0: जी,
1: कहते हैं कि जो टाइम की पाबंदी
0: जी,
1: चाहे आप किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं, टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी
0: है,
1: लेकिन नशरियात में तो और उससे भी ज्यादा है
0: जी। असल में क्या है,
1: उसके बारे में थोड़ा बताइए कि
0: रेडियो की मुलाजमत दूसरे इदारों की मुलाजमत से बहुत मुख्तलिफ है
1: जी।
0: यहाँ आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जो और जगह नहीं करना पड़ता
1: जी।
0: यहाँ सबसे पहले वक्त की पाबंदी और जुनून, आप में एक जुनून होना चाहिए काम करने का, कि हमको काम करना है, किस तरह करना है ना। बगैर जुनून के, बगैर जोश के, बगैर पूरी तवज्जो के साथ आपको उसको प्रोग्राम को करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोग्राम ऐसा हो जो सबके मतलब का हो।
1: मतलब कोई प्रोग्राम किसी भी तबकों को को कहीं ना कहीं परेशान ना करे, ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे तो परेशान ना करे।
1: चलिए हम आपको फिर दोबारा ले जाते यादों में। आप यहाँ पर कितना वक्त देते थे? 24 घंटे का दिन होता है, और कहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग ऐसी है अगर आप इससे मोहब्बत कर बैठे तो 24 घंटे यही निकल जाते हैं स्टूडियो में।
0: असल में शुरू में ही मैं ऑल इंडिया रेडियो 8 बजे पहुंच जाता था,
1: टाइमिंग के एकदम पाबंदी जो थी,
0: 8 बजे मैं पहुंच जाता था ऑल इंडिया रेडियो और अपना काम संभाल लेता था। अब वो काम 5 बजे तक खत्म हो, 7 बजे तक खत्म हो, 9 बजे तक खत्म हो, या 12 बजे तक खत्म हो, मैं उस वक्त तक नहीं हिलता था जबकि वो प्रोग्राम मेरा कंप्लीट ना हो जाए।
1: अच्छा ये बताइए कि उस वक्त आपके जो सीनियर्स थे
0: जी,
1: उनका तो आपने जिक्र किया
0: जी,
1: आपके साथियों में कौन थे जो जिस तरह से आप एक जोश के साथ, एक मोहब्बत के साथ जो इस प्रोग्राम बनाते थे, उस वक्त आपके साथियों में कौन कौन?
0: सबसे पहले नाम मैं फरहत हुसैन साहब का लेना चाहूँगा
1: जी।
0: फरहत हुसैन उर्दू सर्विस से शुरू होते ही पैक्स कोऑर्डिनेशन थे, और उनके प्रोग्राम मैं उनको सपोर्ट करता था, मैं उनको हेल्प करता था, असिस्टेंट था मैं उनका, वो क्या करता था, तो वो अपने काम में बड़े माहिर। उनका आलम यह था कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड चल रहा है, उन्हें कुछ बोलना है बीच में, तो उस पर 2 उंगली रखते थे, रिकॉर्ड वहीं रुक जाता था बगैर स्क्रैच के। वो फेडर अपना ऑन करके माइक का बोल कर फेडर बंद किया, हाथ उठा लिया, बगैर स्क्रैच के वो टेप अपने उसी स्पीड पर चलने लगता था, टेप नहीं रिकॉर्ड। वो इस तरह का काम करते थे।

0: इको चैनल हमारे यहाँ नहीं था, कोई नहीं था,
1: कंसोल
0: हमें
1: ड्रामा
0: करना उसमें इको चाहिए,
1: कंसोल में नहीं होता था ये।
0: वो उन्होंने टेक्निक सिखाई। एक और मेरी टेक्निक है सुपर इम्पोज करने की, पेंसिल लगा के, है ना, वो उन्होंने सिखाई। ऐसी बहुत सी चीजें सिखाई, मेरा दिल लगता था उनके साथ काम
1: जब आप टेप पे रिकॉर्डिंग करते थे, वो हमने भी वो देखा जब टेप रिकॉर्डिंग्स होती थी, और कई बार तो टेप को काटना भी पड़ता था, तो वो किस लिए काटना पड़ता था सरफराज साहब? क्योंकि उस वक्त तो मुझे लगता है कि एडिटिंग में या कहीं टेप में कुछ, क्योंकि वो मैग्नेटिक टेप हुआ करते,
0: या तो वो टेप खराब है इसलिए काटते थे, या वो रिकॉर्डिंग सही नहीं आई है उस जगह पर। एक और वाक्य मैं आपको सुना दूँ, बड़ा दिलचस्प था। सलाम मछली शहरी स्पोकर बोर्ड देखते थे, लखनऊ से कलाम आया किसी का, तो फरत हुसैन से कहने लगे कि भाई ये देखिए मेरा जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो तो गायब हो गया, छुट्टी पर है, और मुझे ये सुनना है रात का ब्रॉडकास्ट से क्या होगा। तो फरत हुसैन ने कहा कि कंट्रोल रूम में जाइए CRR में, वहाँ कोई ना कोई इंजीनियर आपको टेप लगा देगा, आप सुन लीजिएगा। चले गए, सलाम मछली शहरी की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ जाकर इंजीनियर से कह दिया, उसने प्लेबैक किया, ये सुने, वो जो 10 मिनट का था कलाम शायद वो ख़त्म हो गया। अब इन्होंने उधर तो देखा उस इंजीनियर को, इंजीनियर नज़र नहीं आया, तो उन्होंने टेप पे फॉरवर्ड पे उंगली मार दी, वो एकदम तेज हो गया, घबरा गया, उन्होंने रिवाइंड पे उंगली मार दी,
1: टूट गई टेप,
0: हैं, तो वो टेप जो है दोनों स्पूल
1: उलझ
0: के टूट गया
1: जी।
0: उसके तो एक इस स्पूल में, एक इस स्पूल में, और एक टुकड़ा 2 फुट का जमीन पे गिर गया। उन्होंने जमीन से टुकड़ा उठाया, जेब में रखा, और हाँफते काँपते दोनों चीज़ों को लेके पहुंचे फरहत के पास कि देखो मेरी तो नौकरी चली जाएगी रात का ब्रॉडकास्ट से, ये टूट गया। तो फरहत हुसैन हंसे, मैं बराबर में खड़ा था, मैं कहने लगे सरफराज भाई जाके टेप जोड़ दीजिए
1: जी।
0: ये मेरे साथ आए, मैंने टेप जोड़ा, जब उसे प्लेबैक किया तो एब्रप्ट, मैंने कहा सलाम भाई ये तो बड़ा एब्रप्ट है, वो जो हो करके उन्होंने जेब से
1: बाकी हिस्सा
0: ये भी।
1: हमने बहुत सारी यादों के झरोके से आपसे बहुत सारी चीज़ें निकलवाई, और हम देख पाए कि जो आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, और हम दुआ भी करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से मास मीडिया में काम करते रहें। और जैसे हम आपको बताए कि शुरुआत में कि हम 90 साल आकाशवाणी के मना रहे हैं, और उसमें से 90 साल से मैं जो आधे से ज़्यादा आपका तजुर्बा रहा है रेडियो में, करीब 50 साल का, तो हमारे सामीन को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। रेडियो में उर्दू सर्विस किस तरह से शुरू हुई, किस तरह से सरफराज साहब और जो दीगर यहाँ पर अफसरान थे उन्होंने कैसे काम किया, और इस सर्विस को कैसे यहाँ तक लेके आए, तो आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत सी बातें हैं दिल में कहने के लिए,
1: एक शेर अर्ज हो जाए,
0: नहीं है
1: एक शेर अर्ज हो जाए,
0: उम्र गुजरी है इसी दस की सयाही पे, ये मैं कह सकता हूँ।
1: तो सरफराज साहब, एक जो नई नस्ल इस प्रोग्राम को सुन रही है, उसको जो हमारा हिस्ट्री है उसके बारे में जानने को मिला, मगर एक जो मैसेज आप देना चाहते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ना चाहते हैं, नशरियात से जुड़ना चाहते हैं, उर्दू में काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज आपका?
0: असल में ब्रॉडकास्टिंग जो है वो दिल का सौदा है। अगर आपके दिल में ब्रॉडकास्टिंग से मोहब्बत है
1: जी,
0: तो आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, मुसलसल आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना।
1: तो सरफराज साहब की बातें आपने सुनी, और इतनी मोहब्बत से इन्होंने हमसे बात की, और आज भी ऐसा लगता है कि हम उसी एरा में जी रहे हैं जिसमें सरफराज साहब ने काम किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो आए,
0: शुक्रिया।
2: सामीन, अभी आप रूबरू प्रोग्राम के तहत आकाशवाणी के मारूफ ड्रामा प्रोड्यूसर जनाब सरफराज अहमद से की गई यह बातचीत सुन रहे थे। शरीक गुफ्तगू थे जनाब मुबीन खान। प्रोग्राम की तरतीबो पेशकश थी इंतजार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का यह प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।

0: होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: Sri Mandlewala. He has a long-term vision that by 2047, no citizen should lose life because of the non-availability of organs. For that, he has traveled extensively across India.
1: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
2: Kantha, ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगश्री अवार्ड।
1: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
0: श्री सत्य
1: नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
0: Under Sri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which was
1: supplied to the Indian Army. Pajanivel Khel Silambam.
2: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसन पर आकर श्री पंड्या का सम्मान।
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया।
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
2: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek कि राष्ट्र ऐसे सेवकों का

0: घृणी है।
1: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
2: Shri Gari Mela Bal Krishna Prasad Marnoprant Kala Gayan, unke putra Shri Gari Mela Anila Kumar.
0: Anila Kumar, unke bihaav par legi ye puraskar. Gali Mela Bal Krishna Prasad, 78 varsh ki umr mein ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
2: Srimati Deepika Reddy, Kala Nritya.
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज़ द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications, and organized numerous international conferences to bring cutting-edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: have borne fruit. Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
0: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
1: श्री हरिचरण शैकिया परफॉर्म्ड सत्रीय डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर And second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan also. He performed the Bhargeet with Maniram Gayan Mokhtar at All India Radio in 1948.
2: Professor Vempati Kutumb Shastri.
0: 86 साल के शास्त्री जी
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: संस्कृत विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
1: प्रोफेसर वेंपटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। ही हैज आल्सो गाइडेड न्यूमरस डॉक्टरल स्कॉलर्स एंड डिलीवर्ड हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स।
2: प्रोफेसर शफी शौक साहित्य एवं शिक्षा।
0: 100 से ज़्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है। प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: श्री बलदेव सिंह खेल

0: हॉकी कोच
1: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं, एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाद मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
0: श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह।
1: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
1: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
1: अब बारी श्रीमती शिव शंकरी जी की। आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में और ख़ास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। ही हैज आल्सो प्लेड अ सेंट्रल रोल इन लॉन्चिंग ज्ञान दर्शन ग्रुप ऑफ चैनल्स, द फर्स्ट 24-आवर एजुकेशनल टेलीविजन चैनल।
0: प्रोफेसर श्याम सुंदर, चिकित्सा कालाजार।
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
0: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा।
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी है और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
2: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through

0: आए और हमारे श्रोताओं को इतनी विस्तृत रूप से आयुर्वेद की भूमिका के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हाँ, आयुर्वेद केवल रोगों का उपचार नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है। गर्मियों में सही खान पान, नियमित दिनचर्या और प्राकृतिक उपाय अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। और भाई, ऐसी ही जानकारी हम ले रहे थे गर्मियों में स्वास्थ्य का सही रखने में आयुर्वेद की भूमिका, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर उमेश सापरा और इनसे बातचीत कर रही थी कमलेश मुदगल।
2: जी हाँ, और अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं बबीता की आवाज में ये रागनी।

0: देखिए सही था बहन, अभी हमारे भाई सुन रहे थे बबीता की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था मोर ध्वज का। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा ये एक योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, राष्ट्रीय आयुष मिशन। इसमें जो होता है कि वे जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे बच्चे भी हैं, कोई भी है, उनके लिए जो आयुर्वेद की मेडिसिन है, ये और जगह जगह जो खुले हुए हैं जन औषधि केंद्र।
1: बिल्कुल। और ये ना भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है,
0: जी
1: जिसे आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास और प्रचार के लिए शुरू किया गया। और इसका जो उद्देश्य वंदना बहन, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है उसको मजबूत बनाना तथा
0: बिल्कुल
1: लोगों तक सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।
0: बिल्कुल। और जैसे कि 60 साल के बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना, उनके कार्ड बन जाने के बाद उनका फ्री इलाज होना, ये सब इसी में आता है।
1: बिल्कुल। और कहते हैं ना कि आयुष चिकित्सा सेवाओं का जो है ना, इसमें विस्तार करना, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, आयुष अस्पतालों और औषधालय को मजबूत बनाना, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना,
0: जी
1: आयुष शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, लोगों की को प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के प्रति जागरूक बनाना। और
0: बिल्कुल
1: इसके बहुत सारे ऐसे हैं, आपने जैसे भी बताया कि भाई इसमें आयुष संस्थाएं, सेवाएं हैं, शैक्षणिक संस्थानों का विकास हो रहा है, औषधीय पौधों का संरक्षण किया जा रहा है और इसकी खेती भी अच्छी खासी हो रही है, किसान जो है मुनाफा भी कमा रहे हैं।
0: मुनाफा भी
1: और
0: कमा रहे हैं। और देखिए हमारे जो भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आसानी से ये दवाइयाँ उपलब्ध भी हो रही हैं, जिससे वो अपना अच्छे से इलाज भी हो पा रहा है।
1: बिल्कुल। लोगों को कम खर्च में स्वास्थ्य सेवाएं मिल
0: जी
1: रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार देखा जा रहा है। तो भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा जो पद्धति है ना, उसको पूरी विश्व में पहचान मिलती जा रही है।
0: बिल्कुल, ये हमारी पहले से, पहले भी हम इस चीज का ही, आयुर्वेद का ही, इससे ही इलाज करते थे।
1: बिल्कुल।
0: और आज भी अगर हम इसको बढ़ावा देंगे तो हमारी ये जो पद्धति है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक वरदान साबित होगी।
1: बिल्कुल। और भारत की जो प्राचीन चिकित्सा है, विरासत को सुरक्षित रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो भाई ये था हमारा राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात, और इससे जानकारी के बाद क्यों ना हम मनोरंजन करें अपने भाई बहनों का।
0: जी हाँ, और अब सुनवाते हैं ये रागनी यशवीर की आवाज में।
2: हाँ।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे यशवीर की आवाज में ये रागनी और किस्सा था कृष्ण सुदामा का। और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब सुनिए समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026

0: 2020 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामास्वामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम
1: राम राम।
0: राम। सरिता बहन, देखिए आज हम बातचीत करेंगे, अपने भाइयों से कुछ जानकारी भी दिलवाएंगे और उनका मनोरंजन भी करवाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले, जैसे कि हमारी खेती क्यारी की अगर बात करें, तो इस वक्त कपास की अगर बात करें, जिसे हम सफेद सोना भी
1: बिल्कुल।
0: कहते हैं, तो उसके बारे में हम उनकी जानकारी भी दिलवाएंगे। लेकिन क्या कहना कि भारत सरकार द्वारा देश में कपास की जो खेती है उसकी उपज को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि कपास को घटते उत्पादन और खराब गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है।
1: बिल्कुल कहा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कपास यहाँ की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है।
0: जी
1: और कपास की अगर हम बात करें ना वंदना बहन, तो ये एक फसल नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें सूती, कपड़े, धागे, तेल, पशु आहार तथा अनेक औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: भारत विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में गिना जाता है। और
0: बिल्कुल
1: अगर हम प्रदेश की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और कपास की जो अच्छी पैदावार से किसानों की आय बढ़ती है और वस्त्र
0: बिल्कुल
1: उद्योग को पर्याप्त कच्चा माल मिलता है।
0: बिल्कुल। और किसानों को जो कीट प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूल बीज, उन्नत खेती और तकनीकें प्रदान की जाती हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि किस तरह से हमें अपनी कपास को ठीक रखना है, कीटों से बचाना है, जलवायु का कैसे नियंत्रण रखना है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना है।
1: बिल्कुल। और जिस तरह की भाई कपास हम दिवस की बात करते हैं, तो ऐसे में क्यों ना हम एक अच्छी सी वंदना बहन जानकारी ले ले जिसमें कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जा रही है। और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवराग बाजरा बाजिया, उनसे बात कर रही है प्रतिमा शर्मा। और देवराय बाजरा जो है सहायक प्रोफेसर है जोबनेर यूनिवर्सिटी जयपुर में।
0: जी हाँ, तो बातचीत कर रही हैं देवराम बाजा से प्रतिमा शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। किसान भाई बहनों, खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। विषय है कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी का प्रभावी प्रबंधन। आप जानते हैं कि कपास को सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि ये किसानों की आय बढ़ाने वाली प्रमुख नकदी फसल है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गुलाबी सुंडी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यदि समय रहते सही प्रबंधन किया जाए तो इस नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है और इसीलिए हम ये विषय आपके लिए लेकर आए हैं, कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवराम बाजिया, सहायक प्रोफेसर श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौनबेर जयपुर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त समय कौन सा है।
3: देखिए किसान भाइयों, कपास की बिजाई के लिए जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो 15 अप्रैल से लेकर 10 जून तक का सबसे उपयुक्त समय है। उसमें भी जो मई का महीना है, अगर इस महीने के अंदर आप बिजाई कर देते हैं तो उसमें अच्छी पैदावार होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। इस समय कीट, बीमारियां और तमाम तरह की जो कपास की फसल में समस्याएं आती है वो कम से कम आने की रहती है और पैदावार ज्यादा से ज्यादा होती है।
2: तो डॉक्टर साहब, कपास की बुआई करते समय खेत की तैयारी और बीज का उपचार करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे।
3: देखिए जो कपास की फसल है इसमें तीन तरह की किस्में लगाई जाती है, जिसमें एक तो देसी कपास की किस्में होती है, एक अमेरिकन होती है, तीसरी जो होती है वो है संकर किस्में। तो जो संकर किस्में होती है उसके अंदर भी बीटी और नॉन बीटी दो तरह के बीज आते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। संकर किस्में वो ऑलरेडी बीज उपचारित आता है उनका, उनको उपचार करने की जरूरत नहीं होती। और जो अमेरिकन किस्में हैं और देसी किस्में हैं जो हम घर पे अपना बीज भी तैयार कर सकते हैं, उनको बीज के उपचारित करने की जरूरी होती है। ये देखना होता है कि बीज आपके खेत के अंदर, जैसे आप लगातार कपास

0: की फसल ले रहे हैं तो पहले क्या क्या समस्या आई, जहाँ पे अगर दीमक की समस्या है लगातार आती है, उखेड़ा एक रोग आता है, उकटा रोग जिसको बोलते हैं, अगर वो आ रहा है तो उसके लिए भी बीज का उपचार करना है। एक रस चूसक जो कीट आते हैं वो शुरुआती अवस्था में फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए तो उनके लिए भी उपचार करना पड़ता है। और अगर आपको ये फसल अच्छी लेनी है तो एक इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है जिसको FIR बोलते हैं, फंजीसाइड फफूंद नाशक। सबसे पहले तो ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 ग्राम लेना है 1 किलो बीज के अंदर, जिसके अंदर वो बायो पेस्टिसाइड है उसको आप बीज से उपचारित करना है। इसके बाद में आपको इंसेक्टिसाइड जैसे रस चूसक कीट है जिसमें हरा तेला, सफेद मक्खी और माहू चेपा हो गया, और एक चुरड़ा थ्रिप्स जिसको बोलते हैं, इन कीटों की अगर समस्याएं हैं तो वहां पे सकिंग पेस्ट जहाँ पे आ गए वहां पे इमिडाक्लोप्रिड जिसको हम गाउचो के नाम से भी बोलते हैं, 600 FS 7 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज का फफूंद नाशक के बाद में इंसेक्टिसाइड से उपचारित करना है। इसके बाद में आप एजोटोबैक्टर जो पौधे को पोषक तत्व शुरुआती अवस्था के अंदर नत्रजन जो उर्वरक है वो पौधे को अवेलेबल करवाता है, एजोटोबैक्टर का 1 पैकेट प्रति किलो बीज के अंदर मिलाकर जब FIR पूरा हो जाए उसके बाद में 3 से 4 घंटा बीज को पेड़ के नीचे छाया में सुखाएं और फिर उसकी बिजाई कर देनी।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हमने कहा कि कपास को सफेद सोना कहा जाता है और किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी ये खेती होती है, तो किसान भाई ये भी सोचते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जिसे लगाने से उन्हें आने वाले समय में जब फसल काटें तो उनको कई गुना बढ़कर मिले, तो कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं?
0: देखिए, जो कपास की जो फसल है, जो अभी मैं बताया कि 3 तरह की होती है, एक तो देसी किस्में होती है, एक अमेरिकन किस्में है, तीसरी जो संकर किस्में है। वर्तमान में अगर हम भारतवर्ष का परिदृश्य देखते हैं तो 95% जो खेती है वो कपास की संकर किस्मों की हो गई है, जिसमें भी बीटी कपास की खेती करते हैं। और बीटी कपास अगर भारतवर्ष की हम बात करते हैं तो 3 जोन में बांटा हुआ है, जिसके अंदर उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत। अगर आप इन किस्मों की बात करते हैं तो हर जोन वाइज अलग अलग लगभग 4000 से भी ज्यादा किस्में भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित है। आप जिस भी क्षेत्र के अंदर हैं वहां पे सबसे पहले तो यह है कि आप मिट्टी पानी इसकी जांच जरूर करवाएं। जांच करवाने के बाद में आपके क्षेत्र के अनुसार अनुमोदित जो किस्म है, जैसे उत्तरी भारत के अंदर हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान रीजनल स्टेशन सिरसा के अंदर बना हुआ है, तो वहां पे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी,
1: और
0: हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, और कृषि सुपरवाइजर जो इसको पर्यवेक्षक बोलते हैं वो हर गांव-गांव के अंदर है, तो उनसे संपर्क लेके भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं कुछ किस्मों के नाम भी बता देता हूँ जो कॉमन है कि जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आप लगा सकते हैं, जिसमें जैसे RCS 314, 317 है, 134 ये RCH की है, MRC 6029, 6025 है, ऐसे ही कुछ PAU की है, PAUBT 2347। ये कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं। अगर किसान भाई देसी कपास की किस्में लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर देसी के अंदर WH1 CICR2 है, RG8 है, HD123 है, LHH144 है, LD327।
1: ये उन्नत किस्में हैं,
0: ये देसी किस्में हैं जो देसी कपास की खेती करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ अमेरिकन किस्में भी है जिसमें 1098 है, H1098 है, H1117 है, RS2013 है, ऐसी कुछ किस्में हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं। बाकी अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने नजदीक के जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि जो पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, कृषि अधिकारी हैं और विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक गण है उनसे भी आप संपर्क करके अच्छी उन्नत किस्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं हम गुलाबी सुंडी पर, तो ये गुलाबी सुंडी क्या है और कपास की फसल को कैसे नुकसान पहुंचाती है?
0: देखिए, कपास की फसल के अंदर लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा कीट पतंगों से नुकसान होता है, जिसके अंदर जो बॉलवर्म जिसको बोलते हैं सूंडियां, तो उसमें जब बीटी 2002 के अंदर आई उससे पहले 4 तरह की सूंडियां लगती थी, जिसमें से एक ये गुलाबी सूंडी भी थी। अच्छा। तो काफी समय तक तो गुलाबी सूंडी का प्रकोप, जब बीटी आई तो गुलाबी सूंडी का प्रकोप न के बराबर था, बट अब काफी टाइम से ये देखने को मिल रहा है, किसानों की तरफ से भी शिकायतें हैं कि बीटी कपास के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ गया। उस सबसे अहम जो कारण जो मेरे को नजर आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि किसान भाइयों को जब बीटी कपास लगाने के लिए बताया गया, सलाह दी गई, तो उसके साथ में एक नॉन बीटी बीज का पैकेट भी दिया जाता था, ताकि वो खेत के चारों तरफ नॉन बीटी 2-2, 3-3 लाइन लगाए, क्योंकि कीड़ों के अंदर एक विशेषता होती है कि जो भी हम

0: प्रकृति के अंदर जो कीट आए हैं वो धरती के ऊपर डोमिनेंस है इनका
1: जी।
0: तो इनको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, इनको प्रबंध नहीं किया जा सकता है। तो जब इनका कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ इनकी शरीर में या इनके अपने जीन के अंदर कुछ ऐसा बदलाव कर लेते हैं कि ये उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं, जिसको सहनशीलता बोलते हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया कि वो किसान भाइयों ने शायद जहां तक गलती करी कि वो जो नॉन बीटी बीज था उसको तो लगाया नहीं, और वो बीटी लगाने से इस बीटी के प्रति सहनशीलता डेवलप हो गई। जो ये गुलाबी सुंडी है, ये गुलाबी सुंडी क्या करती है कि ये बीज के अंदर एक बार जो टिंडा बनता है उसके अंदर ये घुस जाता है और अंदर बैठा बैठा बीज के अंदर तक बीज को खाता रहता है,
1: खोखला कर देता है।
0: और जब एडवर्स कंडीशन होती है, इसके अनुकूल वातावरण नहीं रहता है, तो 2 साल तक भी इसका जो लार्वा है वो जीवित सुषुप्त अवस्था के अंदर बीज के अंदर पड़ा रहेगा। तो इसलिए जब भी फसल की, जैसे फसल की चुनाई कर देते हैं और जो उसका अवशेष बचा हुआ है तो वहां पे इसका जो प्यूपेशन होता है सुषुप्त अवस्था के अंदर जाता है, तो एक तो खेत की बिल्कुल साफ सुथरा कर देना चाहिए, वहां इसका जो भी बचा हुआ अवशेष है, फसल अवशेष, उसको इकट्ठा करें और खेत से बाहर ले जाके उसको जला दें।
1: डॉक्टर साहब, ये तो आपने सुरक्षा के लिए बताया, लेकिन किसान भाई कैसे पहचान करें कि ये गुलाबी सुंडी है, क्या पहचान है?
0: देखो, ये जो गुलाबी सुंडी होती है, जब कपास की फसल खड़ी होती है और उसमें फूल आते हैं तो गुलाब के फूल की तरह जो कपास के फूल आएंगे वो एक तो खुलेगा नहीं, और इसका जो टिंडा है उसके अंदर जब घुस जाएगी ये, तो फिर जब टिंडे को खोलेंगे तो 2 बीज एक जगह चिपके हुए भी दिखाई देंगे आपको।
1: अच्छा।
0: डबल सीडिंग भी इसका एक करेक्टर है जिसको बोलते हैं, 2 सीड एक जगह चिपक जाते हैं और वो अंदर से उसका एम्ब्रियो और बीज का जो भी प्रोटीन है उसको वो खाती रहती है। तो इसके लिए यह है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स खेत में दिखाई देते हैं तो सबसे उपयुक्त और सबसे बेस्ट इसका तरीका एक ही है कि शुरुआती अवस्था में अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो इसमें क्या होता है कि 4 अवस्थाएं होती है, पहले तितली बनती है, फिर तितली अंडा देती है, अंडे से फिर लट बनेगी और लट से फिर प्यूपा बनेगा और फिर वापिस प्रौढ़ बनेंगे। तो जब आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई दे कि अब ये तितली आने वाली है या आ गई है, तो उस टाइम आप खेत के अंदर फेरोमोन ट्रैप्स 10 से 12 प्रति हेक्टर फेरोमोन ट्रैप इसके लिए काफी मददगार होते हैं, और उसको लगाने से क्या होगा कि जो उसमें नर है वो वहां पे फंस जाएगा, उसमें गंध होती है मादा की, और अगर फिर भी ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम एक कीटनाशक दवा आती है इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG, जिसकी 200 ग्राम 500 लीटर पानी में घोलकर उसके साथ में स्टिकर जरूर मिलाएं, जैसे 3 लीटर पानी के अंदर 1 ml स्टिकर जो चिपचिपा गोंद होता है, उससे क्या होता है कि दवाई की गुणवत्ता बढ़ जाती है और लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। तो इस तरह से इस सुंडी को आप प्रबंधन कर सकते हैं।
1: अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तब छिड़काव करना है
0: अदरवाइज।
1: तो डॉक्टर साहब, कपास की खेती के साथ क्या किसी फसल चक्र को भी अपनाया जा सकता है?
0: जैसे कि आपने कपास की फसल ली है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट फसल आती है उसके अंदर आप गेहूं ले सकते हैं, और उसमें गेहूं चेंज करने से क्या होगा कि जैसे लगातार आप एक ही फसल लेते हैं तो कीटों का, बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है।
1: तो चलते चलते डॉक्टर साहब, क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे उन किसान भाई बहनों को जो कपास की खेती कर रहे हैं और चिंतित भी हैं गुलाबी सुंडी को लेकर?
0: देखिए, मैं किसान भाइयों को यही दूंगा कि एक तो आप जो भी फसल लेते हैं तो सबसे पहले तो बीज अगर आपको सही क्वालिटी का, जो भी अनुमोदित भारत सरकार की जो दुकान है या जहां से भी बीज आपको मिलता है वहां पे पक्का बिल जरूर लें उससे, जहां से भी बीज अगर आप खरीद के लाते हैं। अगर आपके क्षेत्र के अनुसार अनुमोदित किस्म आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। दूसरा ये है कि इस समय जो तापमान चल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि आंधी बारिश का भी दौर चलता है तो बीज महंगा आता है और कुरंड होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो मौसम विभाग के जरूर संपर्क में रहें
1: और सिंचाई व्यवस्था का भी,
0: सिंचाई का
1: उसका भी बता दें डॉक्टर साहब, कितने बार करनी है, कैसे करनी है।
0: सिंचाई का ऐसा होता है कि इसमें जो पहली सिंचाई है वो जितनी देर हो सके उतनी देरी से करनी चाहिए, उससे ये होगा कि उसकी जड़ें अच्छी मजबूत हो जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव करीब 50 से 60 दिन तक कपास की फसल में शुरुआती अवस्था में नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: अगर हम शुरुआती अवस्था में ही किसी कीटनाशक दवा का छिड़काव कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है, जो हमारे प्राकृतिक दोस्त हैं खेत के अंदर पनप रहे हैं, वो सबसे पहले खत्म होते हैं और उससे दुश्मनों की तादाद ज्यादा बढ़ जाती है और फिर हमको उसको प्रबंधन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है।
1: तो सजग किसान ही सफल किसान होता है और समय पर पहचान और सही प्रबंधन से कपास की फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमें पूरी उम्मीद

0: है कि आपने जो आज जानकारी दी उससे किसान भाइयों को जो कपास की खेती कर रहे हैं बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा और सुरक्षित भी वो अपनी कपास की खेती को रख पाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी कपास की उन्नत खेती और गुलाबी सुंडी प्रबंधन। डॉक्टर देव राम बाजिया से बात कर रही थी प्रतिमा शर्मा, और जो कि कपास की बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को उन्होंने दी है। इससे वो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही लाभ होगा, और जिन्होंने कपास की फसल लगा रखी है
2: सुंडी से बचाव कैसे करना है उन्होंने बहुत अच्छी
1: बीमारियों से
2: तरीके
1: जो
2: से
1: बचाव
2: समझा।
1: है वो सब आपको मिल गई होंगी इसकी पूरी तरह से जानकारी।
2: और अब वंदना बहन क्यों ना अब एक हम
1: बाइट भी सुनवाते हैं, एक बाइट सुनवाते हैं इफको की 55वीं वार्षिक आम सभा पर, और बातचीत कर रहे हैं इसमें प्रबंधक निदेशक श्री के जे पटेल से पीएस भाटी, जो कि इफको के निदेशक हैं श्री के जे पटेल। तो इनसे सुनते हैं ये बातचीत।
3: किसान भाइयों आपको बहुत ही जानकर खुशी होगी कि इफको की 55वीं आम सभा की बैठक हुई है, और इसमें जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे जो किसानों के मुद्दे हैं वो सब हल कर दिए, और जैसा कि आप जानते हैं भाई इफको आपकी अपनी संस्था है इसलिए आपको जिस तरह देश में कोई भी दिक्कत आती है तो हम सब साथ रहते हैं। हमारे साथ हैं इफको के प्रबंध निदेशक श्री के जे पटेल साहब, जिन्होंने आज एजीएम आम सभा की बैठक में बहुत सारी चीजें किसान भाई आपको बतानी है। तो पटेल साहब, किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारे किसान भाई कम से कम खाद का उपयोग करें, जो आपके उपयोगी इफको के जो खाद है उनका प्रयोग करें?
4: बस मैं एक ही बात किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ इफको के माध्यम से। देखिए, देश में केमिकल फर्टिलाइजर जो हम उपयोग करते हैं, कोई भी किसान भाई उपयोग करते हैं, तो उससे बहुत नुकसान होता है। एक तो होता है शारीरिक नुकसान, क्योंकि प्रदूषण होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करके अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे हमारे किसान भाई, तो उससे हमारी धरती को नुकसान होता है, वायु को नुकसान होता है, पानी प्रदूषित होता है, और जो उपज निकलती है, जो फसल होती है, उस फसल में भी ऐसे तत्व चले जाते हैं जिसके चलते हुए आज हम सब परेशान हैं। तो हम अगली पीढ़ी की सोचे तो हमें ये देखना चाहिए कि केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग से अब आगे नहीं बढ़ सकते। हमें यदि कोई फर्टिलाइजर का उपयोग करना है तो हमें, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को अपनाएं, हर किसान अपने एक एकड़ जमीन पे ऑर्गेनिक खेती करें। हमारे पास इफको में ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बायो स्टिम्युलेंट्स है, हमारे ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स है, हमारे नैनो फर्टिलाइजर्स है, जो कि इसका आविष्कार देश में हमने किया। हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे किसान यदि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करके, देश पे जो सब्सिडी का बोझ है, पर वो बोझ आज इतना ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ये जो वेस्ट एशिया की वॉर के कारण कीमतें जो है रॉ मटेरियल्स की चाहे लें आप या फर्टिलाइजर्स की लें, तो ये इतनी बढ़ चुकी है कि इस स्थिति में हमारे सब्सिडी का बोझ देश के जो तिजोरी पे देश के ऊपर आएगा उसको कम करें, और हम ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइजर्स को अपनाएं, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें। और इफको इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हम गांव-गांव तक जाकर के, किसान किसान तक जाकर के हमारे जो बायो फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, बायो स्टिम्युलेंट्स, बायो डीकम्पोजर्स, ये सारी चीजों के बारे में उनको ज्ञात कराएंगे, उनको समझाएंगे, और इस समझ के साथ में अगर हमारा किसान भाई अगर ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स नेचुरल फार्मिंग की तरफ या नैनो फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, देश का भी फायदा होगा, किसानों का भी फायदा होगा, और हम सब समृद्ध होंगे।
3: बिल्कुल पटेल साहब, आपने सही कहा। इस साल की क्या उपलब्धियां इफको की रही हैं और भविष्य की क्या योजनाएं?
4: इफको की इस साल की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हमने वर्ष 25-26 के दौरान जो हमें टारगेट दिए गए थे फर्टिलाइजर बनाने के, केमिकल फर्टिलाइजर्स खास करके यूरिया, डीएपी, एनपीके वगैरह का, वो हमने पूरा किया। मैं तो ये कह सकता हूँ कि यूरिया फर्टिलाइजर्स का जहाँ तक सवाल है, तो वर्ष 25-26 के दौरान जो हमको डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर से जो एक क्वांटिटी बनाने के लिए कहा गया था, उस लक्ष्य से भी हमने पार करके 2,00,000 टन और अधिक यूरिया बना करके उसका उत्पादन करके ये साबित कर दिया कि इफको हमारे किसानों के लिए, हमारे देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित है और आगे भी रहेगी।
3: आखिर में किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे किसान भाई पूरी खेती के साथ अच्छा काम करें और संतुलित खादों का भी प्रयोग करें?
4: देखिए, किसान भाइयों को मैं एक ही बात का रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप किसान भाई, हम समझते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हैं खेतों में, खेत खलिहान में जब इतनी मेहनत होती है तब जाके फसल आती है, और वैसे आपकी जो मेहनत है उसको कभी भी बेकार नहीं होना है, और एक इफको जैसी संस्था जो कि किसानों की संस्था

0: किसानों ने इसको इन्वेस्ट किया है और ऐसे किसानों के लिए जो काम करने वाली संस्था है इसकी तरफ से इसके प्रबंध निदेशक के रूप में मैं किसानों को एक आह्वान करता हूं कि मेरे किसान भाइयों, आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को अकेले अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं उसको कुछ नहीं तो आप 25% कम कीजिए, 50% कम कीजिए, नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइजर्स अपनाइए, आप देखिएगा देश भी आगे बढ़ेगा, सब्सिडी का बोझ कम होगा। 2,00,000 करोड़ की सब्सिडी हमने देखा है कि आज पिछले वर्ष हमने इतने खर्च किए, देश तो पूरा सक्षम है, जितनी जरूरत किसानों की है उतनी ही फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें आदेश है सरकार की तरफ से। लेकिन हम किसानों को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये सब्सिडी का जो बोझ है उसको कम हो जाएगा, अगर आप 25% भी बोझ कम कर देंगे जो पैसे बचेंगे ना वो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में वैसे ये उपयोग किया जाएगा, देश का भी भला होगा और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से बाहर से आने वाले जो रॉ मटेरियल्स या फर्टिलाइजर्स हम विदेशों से खरीदते हैं वहाँ हमारा पैसा जा रहा है, वो पैसा भी जाना बंद होगा, रुपये की कीमत जो आज डॉलर के सामने गिरती जा रही है उसमें भी फायदा होगा।
1: बिल्कुल सही बात है पटेल साहब, आपने जो किसानों को आह्वान किया है आपकी बात को भी बिल्कुल समझेंगे और उसको अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी आप एक बाइट सुन रहे थे इफ्को की 55वीं वार्षिक आम सभा और इसमें बातचीत कर रहे थे प्रबंध निदेशक श्री के जे पटेल से पीएस भाटी। तो ये एक तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी। और अब वंदना बहन क्यों ना अब हम थोड़े जो बाजार के जो भाव हैं हम अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दे दें।
3: जी बिल्कुल, हरियाणा की मंडियों से कुछ भाव हमारे पास हैं वो हम अपने भाइयों को बता देते हैं। गेहूं का इस वक्त जो रेट चल रहा है वो है 2585 रुपये प्रति कुंटल। धान का जो भाव है वो 3500 रुपये प्रति कुंटल है और सरसों जो 7800 रुपये प्रति कुंटल है। आजादपुर मंडी में आलू का भाव है 1200 रुपये प्रति कुंटल।
2: जी हाँ, और अगर बात करें हम दालों की तो अरहर दाल का जो भाव रहा है वो रहा है 12,500 और गुड़ का भाव रहा है 7000। और बात करें अगर हम चीनी की तो चीनी का जो भाव रहा वो रहा 4150। और वंदना बहन कल के कार्यक्रम की भी हम क्यों ना जानकारी दे दें अपने भाई बहनों को। जी हाँ, कल आप 6:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम संसार और शाम 7:05 पर हमेशा की तरह आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।
3: जी हाँ,
2: और भाई जाते जाते हम यही कहेंगे वंदना बहन की गर्मी अपनी चरम सीमा पर है तो ऐसे में हमारे जो भी भाई बहन है इस गर्मियों में अपना पूरा ख्याल रखें और पानी खूब ज़्यादा पिए और साथ ही साथ आप धूप में थोड़ा कम, मतलब खेतों में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सुबह जा करके खेतों का काम निपटाएं और
3: सुबह में फिर शाम को यानी दोपहर में आप खेतों में ना रहें क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है वो बहुत ही धूप वाला होता है और उससे आपके स्वास्थ्य को फर्क पड़ सकता है क्योंकि लू चल रही होती है। अगर किसी को लू लग जाती है तो उसका तुरंत चिकित्सक के पास जाकर इलाज करवाएं क्योंकि लू लगने से व्यक्ति के सांसों में भी दिक्कत आ जाती है और शरीर में भी कमजोरी महसूस होती है।
2: जी हाँ, और ऐसे में खाने पीने का भी आप पूरा ख्याल रखें, बाहर की चीज़ें, खुली चीज़ें, कटी फटी चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें, मतलब साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं। और भाई हम तो ये कहेंगे इस मौसम में आप अपना सर सूती कपड़े से ढकें और खूब सारा आप पानी पिए।
3: जी बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम अपने भाइयों से लेते हैं विदा। कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
2: राम राम। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं कुछ गजलों का।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे जगजीत सिंह के गाए कुछ गजलों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गए सैमरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ।

0: रिद्ध नारी।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अल्पा लांगवा को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2024 में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के पार्षदों को 50-50 लाख की विकास निधि जारी की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और राष्ट्रीय राजधानी में लू का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
3: जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
4: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
3: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावाधिनी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामास्वामी पाई स्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह में दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता अल्का लांबा को वर्ष 2024 में जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने लांबा को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर दलीलें सुनने के लिए 5 जून की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अल्का लांबा पर 29 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के काम में बाधा डालने और एक सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया था। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने आज केंद्र सरकार के उस आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई जिसमें क्लब को अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सरकार को सौंप देने को कहा गया है। न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए कल का दिन तय किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब से 5 जून तक अपना परिसर वापस सरकार को सौंपने को कहा है। सरकार का कहना है कि 27 एकड़ का ये जमीन का टुकड़ा रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति

0: शांति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सरकार की मेट्रो मंडे पहल के तहत अपने आवास से दिल्ली सचिवालय तक मेट्रो और डीटीसी बस से यात्रा की। श्रीमती गुप्ता ने नागरिकों से साझा और टिकाऊ परिवहन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अगर अधिक से अधिक नागरिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाते हैं तो इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने के साथ साथ प्रदूषण भी कम हो जाएगा। मेट्रो मंडे अभियान के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज अपने आवास से दिल्ली विधानसभा तक मेट्रो से यात्रा करके पहुंचे। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन संरक्षण के आह्वान से प्रेरित ये पहल नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने और ईंधन बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दिल्ली की उप महापौर डॉ मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की आमसभा की बैठक में शामिल होने के लिए ई व्हीकल के माध्यम से कार पूलिंग करते हुए दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पहुंची। ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज बताया कि सभी पार्षदों को 50-50 लाख रुपए की विकास निधि जारी की गई है। इससे विभिन्न वार्डों में नालियों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। ये निर्णय दिल्ली सरकार निगम की सामान्य सभा की बैठक के दौरान लिया गया। श्री वाही ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा 14 नए यांत्रिक सड़क स्वीपर खरीदे गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात की और दोनों राज्यों के आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा विकास के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दोनों राज्यों का सतत विकास और परस्पर सहयोग विकसित भारत के साझा लक्ष्य को गति प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लिया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह की दलीलों पर संज्ञान लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। राजधानी के दो प्रमुख सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक ढांचे के अंतर्गत प्रतिष्ठित गुणवत्ता प्रमाणित मान्यता प्रदान की गई है। राजधानी के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल ने 96% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में अहम समीक्षा की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को उन्नत करने को लेकर पिछली सरकारों ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया।
1: दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है। पिछले 25 सालों से लगातार सरकारें इंश्योरेंस देती रही, लेकिन किसी ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि हमने हर सूरत में अपने 5 साल के टेन्योर में यमुना जी की सफाई करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि जो उसके अंदर पानी आता है, जो अलग अलग जगह से एसटीपी के माध्यम से सीईटीपी के माध्यम से आता है, वो साफ जाए। हम सारे एसटीपी को सीईटीपी को जहां जहां डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है वो भी कर रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से इस महीने की 6 से 23 तारीख के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में लगभग 2,65,000 लोगों तक राहत पहुंचाई गई। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए लगभग 1,13,900 लीटर ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई। एक रिपोर्ट।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन यूनिट्स के माध्यम से 1 लाख से अधिक ORS पैकेट बांटे गए, जिससे लोगों को लू और पानी की कमी से बचाया जा सके। साथ ही तेज धूप से बचने के लिए 40,000 से अधिक गमछे और 30,000 से अधिक कैप भी वितरित की गयी। उन्होंने बताया कि राजधानी के विभिन्न जिलों में विशेष कूलिंग जोन भी स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को आराम करने और गर्मी से राहत पाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि हर कूलिंग जोन में 100 कुर्सियां की बैठने की व्यवस्था, ठंडा जल, 5 कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। इन कूलिंग जोन के संचालन और सहायता के लिए प्रत्येक स्थान पर 10 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ये भी सुनिश्चित किया गया है कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के वाहनों की जगह प्रतिदिन बदली जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुँच सके। ये अभियान जुलाई महीने तक जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अलका लांबा को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2024 में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के पार्षदों को 50-50 लाख की विकास निधि जारी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी में लू का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं और 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका में कुछ सुंदर से गीत। तो शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ। और आज मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और ज्वाली मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म आईना से ये गीत। और लीजिए, अब सुनते हैं कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना।

दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहिब, हौसलों से उड़ान होती है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सड़क फिल्म से ये गीत, और लीजिए आप सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दलाल का ये गीत।

दोस्तों, जीवन में किए गए अच्छे कर्म समय के साथ अवश्य लौटते हैं, कभी अवसर बनकर तो कभी आशीर्वाद बनकर। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें तो इसका फल क्या होगा। हमें अच्छे कर्म बिना कुछ मांगे या सोचे करते रहना चाहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गीत मालिका में कुछ सुंदर फिल्मी गीतों का। ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में

0: महेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
5: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
8: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में

0: तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में

0: जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art.

0: USD to close at 95.23 rupees against the US dollar. In the global crude oil market, Brent crude was trading 5.5% down at $97.78 per barrel when reports last came in. Vaibhav J. Srivastav for Akashvani News.
1: The government is making all efforts to ensure smooth supply of petroleum products within the country. Addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the refinery production of LPG in the country has been increased to 50,000 tons per day. The Joint Secretary said that over 8 lakh PNG connections have been gasified since March, adding that infrastructure has been created for 2,87,000 connections. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for warm night conditions over Madhya Pradesh, Orissa, Telangana, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Uttarakhand till tomorrow. The IMD has also predicted hot and humid weather over Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Bihar, Kerala, Mahe, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, North Interior Karnataka and Northeastern region tomorrow. At the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medals today. In the 57kg freestyle category, Akshay Tanaji Dhere defeated Yelaman Amangal Diev 4-2 to claim the top podium spot. Meanwhile, in the 97kg freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzod Poyonev. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under-23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमी महमूद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एमएसएमईज को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ سول انویسٹر تقریب میں سال 2026 کے لیے 66 اہم شخصیات کو آج پدم ایوارڈ سے نوازا. ان میں سے دو کو پدم وبھوشن، 6 کو پدم بھوشن اور 58 شخصیات کو پدم شری سے نوازا.

0: आवाज़ गया। तकरीब के दौरान नायब सदर सीपी राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजरा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेम्बर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ एफ से शुरू होने वाली 3 चीजों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की जरूरत को उजागर किया है। ये 3 चीजें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और जर मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्जों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मजाहिमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निजाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीद कारी के काम को तेज रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें सिडबी मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्देअमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही में शामिल थे। गंडोला केबिर कार के निजाम में तकनीकी खराबी के बाद यह कार्रवाई की गई। बेस स्टेशन और फेस वन के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बायस आज कई सयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौका पर फौरन पहुंच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाजों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PC नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरखास्तों पर जवाब तलब किए हैं, जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान منعقد کرانے کے لیے کسی زیادہ وسیع تجربے والے اور خود مختار ادارے کو مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں ایجنسی کے کام کاج کو چست درست کرنے سے متعلق اسرو کے سابق سربراہ

0: के राधा कृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाएं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को नीट यूजी 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तहान को महफूज, सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक़द कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदामात का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर अहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स, जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें और जमीनी सरहदें शामिल हैं, पर जांच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने अहलकारों से यह भी कहा कि वह पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैन अवी तशवीश की अवामी सेहत से मुतालिक एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमात इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिलों में 3 मकामात पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए, जिसके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक रियासत में जमात इस्लामी और इसके मुतअद्दिद ट्रस्ट और तंजीमों की सरगर्मियों से है। एजेंसी के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से यह इंकशाफ हुआ है कि ममनुआ तंजीम वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्दी को फरोग देने में सरगर्म रही है। यह तंजीम तालीम और सेहत जैसी फलाही सरगर्मियों के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करने के काम में मुलव्विस थी। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में कल क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वॉन्ग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिसो मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रोबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़रा तमाम तरजीही शोबों में क्वाड तआवुन को फरोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ का जायजा लेने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहम नौयत के दीगर बैन अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक आजाद और खुले भारत बैरुल काहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नजर वज़रा पिछले बरस 1 जुलाई को Washington DC में हुई तबादला ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में यह रिपोर्ट पेश की है।
1: इस बरस वज़राए खारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी और मगरबी एशिया के बहरान के वक्त मुनक़िद हो रही है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है, जिसकी ज्यादातर तवज्जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम है। इत्तेहाद के मौजूदा सदर की हैसियत से भारत ये मीटिंग मुनक़िद कर रहा है। क्वाड मुल्क इस अज़्म के साथ यकजा हुए हैं कि पूरी दुनिया की बेहतरी और एक खुले, आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल खित्ते को ताउन देने की गरज से एक ताकत के तौर पर काम करेंगे और इसे एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो खुशहाल और मुजाहिम हो। क्वाड ने एक मुस्बत और अमली एजेंडा अख्तियार किया है, जिसमें हम असर मसाइल और चैलेंजों पर तवज्जो दी जा रही है। इन मामलों में सेहत से मुतालिक सिक्योरिटी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और भारतीय और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इलाकाई ममालिक के दरमियान समंदरी सरहद के निज़ाम से मुतालिक बेदारी को मुस्तहकम करना शामिल है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में 1947 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह प्रोजेक्ट के मेयार और देखभाल की पेशरफ का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने जमीनी सतह पर अमल दरामद में तेजी लाने, मेयार की निगरानी को मजीद मौसर बनाने और असासों की पायदारी को बढ़ाने के लिए जदीद तामीराती तरीक़ेकार इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सफरी मेयार को बेहतर बनाने और अहम राहदारियों में बिला रुकावट रबते को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। سرکار ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے۔ مغربی ایشیا میں حالیہ صورتحال کے بارے میں آج نئی دلی میں منعقدہ بین وزارتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا

0: कि मुल्क में एलपीजी की रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाकर 50,000 टन यौमिया कर दी गई है।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सिफारतखाना और कौंसुलेट भारतीय बिरादरी की खैर आफियत के लिए उनसे राबते में है। दिल्ली जिमखाना क्लब के मेंबरान ने आज मरकज के उस हुक्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है जिसमें क्लब से कहा गया था कि वो अगले माह की 5 तारीख तक जिमखाना की इमारत हुकूमत के सुपुर्द कर दें। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस लीडर अलकालांबा को 2024 में जंतर मंतर पर एक एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार पर हमले से मुतालिक एक मामले में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने लांबा को कसूरवार करार दिया और सजा के मुतालिक दलाइल की समाअत के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक गर्म रात की सूरत हाल रहने से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और उत्तराखंड में भी कल तक इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। वियतनाम के दा नांग शहर में एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे हासिल किए हैं। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में अक्षय तनाजी धीरे ने अपने हरीफ येलामैन को 2 के मुकाबले 4 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में विकी ने शेरजोत को सख्त मुकाबले में 5 के मुकाबले 7 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाईस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: اینجا دیلی است. درود سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، آموزش هندی توسط رادیو، برنامه اسپات لایت، یک ترانه فیلمی هندی، ترانه های فیلمی هندی، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

तेरी दुनिया से दूर हो गए चले मजबूर, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी दर फिल्में ज़बक मीखानन।

0: जाओ कहीं भी सनम, तुझे इतनी कसम हमें याद रखना।
1: डर आखिरी किस्मत बरनामे महलों ने छीन लिया, लता मंगेशकर व मुकेश दर फिल्म में बाजबक मी खानन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृहमंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार

0: Advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Union Minister Science and Technology Dr. Jitendra Singh yesterday met a high-level delegation led by Secretary General, Ministry of Science, Innovation and Universities of Spain Dr. Eva Ortega Peno in New Delhi yesterday. The meeting reflected the growing momentum in India-Spain scientific engagement and the shared commitment of both countries to deepen collaboration in futuristic and technology-driven sectors. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। इस वक्त रात के 1:10 हुए हैं और हुए हैं 8 सेकेंड। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम गीत सुनहरे के। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गीतों के संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम गीत सुनहरे में, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा एवरग्रीन सॉन्ग्स जो भुलाए ना भूले।

तो श्रोता, इस कार्यक्रम की शुरुआत की हमने फिल्म सरगम के गीत के साथ, जिसमें भी आपने सुना ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत जो मैं सुनवाने वाली हूँ वो एक ऐसी लोकप्रिय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें जिसके गीत बेहद ही हिट हुए थे, और इन गीत में फिल्म के गीतों को आर डी बर्मन ने दिया जो कि बहुत हिट हुए, और उन्हीं हिट में से एक गीत हम आपको सुनवाएंगे, फिल्म आगली लग जा।

श्रोताओं, अगला गीत जो हम सुनवाएंगे वो एक सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का एक बहुत ही भावुक और लोकप्रिय गीत है। इस गाने को किशोर कुमार ने गाया था और इसका संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया था। गीत के बोल अनजान ने लिखे थे। ये गीत फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार सिकंदर की दर्द भरी भावनाओं को दिखाता है। गाने में अधूरे प्यार और अकेलेपन का एहसास बहुत गहराई से व्यक्त किया गया है। किशोर कुमार की आवाज़ और भावपूर्ण अंदाज ने इस गीत को अमर बना दिया।

श्रोताओं, अगला गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत एक विश्वासघात और टूटे रिश्तों के दर्द को दर्शाता है। गाने के बोल बताते हैं कि कभी कभी दोस्त या अपने लोग ऐसा दुख दे जाते हैं जो दुश्मन भी नहीं दे पाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक में आए सबसे दर्द भरे हिंदी फिल्म गीतों में गिना जाने वाला ये गीत आखिर क्यों से दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। इस गाने को लता मंगेशकर और अमित कुमार ने गाया था, संगीत राजेश रोशन, गीतकार इंदीवर, कलाकार राजेश खन्ना, स्मिता पाटिल और टीना मुनेन है।

श्रोताओं, अगली पेशकश है फिल्म मेरी जीवन साथी से, और इस गीत को जो हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किशोर कुमार ने अपनी मधुर आवाज़ में गाया था। संगीत आरडी बर्मन ने दिया था और बोल मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। ये गीत राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था और उनके रोमांटिक अंदाज को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। गाने की धुन बेहद मधुर और सुकून देने वाली मानी जाती है, और किशोर कुमार की गायकी और आरडी बर्मन के संगीत का ये शानदार मेल माना जाता है। ये गीत आज भी इतना लोकप्रिय है कि आज भी पुराने हिंदी रोमांटिक गीतों की सूची में सबसे लोकप्रिय गीतों में शामिल किया जाता है। राजेश खन्ना के करियर के सबसे प्रसिद्ध गीतों में इस गाने को गिना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा रोमांटिक गीत फिल्म मेरी जीवन साथी से।

तो श्रोताओं, अगला गीत जो आप सुनेंगे वो इस फिल्म की उस दौर की सबसे चर्चित और सफल हॉरर फिल्मों में मानी जाती थी, और इस फिल्म में कई बड़े सितारे एक साथ देखे गए। जी हाँ, बात करें हैं फिल्म जानी दुश्मन की, जिसमें कई सारे बड़े सितारे जैसे कि सुनील दत्त, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, रीना रॉय, नीतू सिंह, रेखा, संजीव कुमार दिखाई दिए। फिल्म की कहानी एक रहस्यमय शख्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो गांव की नई दुल्हनों को निशाना बनाता है। गांव में डर और रहस्य का माहौल बन जाता है। बाद में पता चलता है कि इसके पीछे बदले और पुराने श्राप की कहानी जुड़ी हुई है। खैर, ये तो रही इस फिल्म की कहानी, लेकिन क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में आप गीतों को सुनेंगे, तो इस गीत को हम सुनवाते हैं, और इस फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत को हम सुनवाएंगे, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

बहुत ही बेहतरीन गीत आप सुन रहे थे फिल्म जानी दुश्मन से। श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते और सुनवाती हूँ अगला गीत, फिल्म उमराव चांद का ही बेहद मशहूर गजलनुमा गीत। इस गीत को आशा भोसले ने गाया था।

संगीत कायम ने दिया था और बोल प्रसिद्ध शायर सहियार ने लिखे थे। यह गीत रेखा पर फिल्माया गया था और उनके अभिनय तथा अदाओं ने इसे अमर बना दिया। गाने में उर्दू शायरी की खूबसूरती और नज़ाकत साफ दिखाई देती है। आशा भोसले की गायकी को इस गीत के लिए बहुत सराहा गया। तो आइए सुनते हैं ये गीत जिसे आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना उस दौर में किया करते।

नदिया के पार फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हेमलता की आवाज़ में। तो श्रोता, सुनवाती हूँ अगला गीत, चूँकि है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म अर्पण से। गीत सुनवाने से पहले इस फिल्म की जो खास बात है वो है इसकी भावनात्मक कहानी। त्याग का विषय और रीना रॉय का गंभीर अभिनय माना जाता है। उस दौर में इसके गाने भी काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। उन्हीं लोकप्रिय गीतों में से सुनवाती हूँ ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: रात्रि के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ ईवा ओर्तेगा पोइनो के नेतृत्व में वाले उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। वहीं खेलों में वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान

0: in futuristic and technology-driven sectors. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओ, इस वक्त रात के 2:10 हुए और हुए हैं 3 सेकंड। अब फिफ्थ है हमारे कार्यक्रम गीत पहाड़ का। जी हाँ, इस कार्यक्रम में गीतों का पहाड़ होगा, यानी नॉन स्टॉप फिल्मी गीत सुन सकेंगे। तो चलिए तेरी किस बात की शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की फिल्म फैशन के गीत के साथ, और सुनते रहेंगे आगे नॉन स्टॉप गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा गीत बाहर कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगी ये कार्यक्रम लेके ठीक रात के 2:10।

0: जलदाता ग्रैंड वाटर, कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मान

सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ. ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के एनपीएफ में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, ये मधुर गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये मधुर गज़ल आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज़ में। वाकई में इनकी आवाज़ में कुछ जादू तो है, कुछ बात तो है। आइए सुनते हैं ये अगली गज़ल चित्रा सिंह की ही आवाज़ में।

वाकई श्रोताओं, ऐसी बेहतरीन आवाज़ हो तो ऐसी गज़ल कोई भी बार बार सुनना चाहेगा। शायद इसीलिए चित्रा सिंह गज़लों की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर पाई। आइए सुनते हैं अगली गज़ल, फिल्म क्षमा कीजिए, आइए सुनते हैं अगली गज़ल पंकज उधास साहब की मधुर आवाज़ में।

श्रोताओं, ये दो गज़लें अभी आपने सुनी पंकज उदास साहब की मधुरा मधुरावास में। श्रोताओं, अपनी गज़ल गायकी से पंकज उदास साहब ने जो एक जगह लोगों के दिलों में बनाई थी, वो शायद कभी मिट नहीं सकती। हालांकि आज के समय में पंकज उदास साहब हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपनी गज़लों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। आइए सुनते हैं अगली गज़ल तलत महमूद साहब की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ गजलों गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: उम्मीद ऑप्टिमिज्म आशा भूपेंदा के हाथ से कभी नहीं छूटती, न लोकगीतों में जो वो गाते हैं, न नज्मों से जो वो लिखते हैं और कंपोज करते हैं, यहां तक कि तन्हाई में भी वो अकेला महसूस नहीं करते, उनका साया उनके साथ रहता है, उम्मीद की जोत जलाए रखता है। और वो ऊंची आवाज से कहते हैं, ना कहो कोई, मैं अकेला हूं।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर M. बाला मुरली कृष्णा की रचना बृहदेश्वरा महादेव।

इस कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

आप सुन रहे हैं एआईआर लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुन रहे थे जी दुर्गा प्रसाद एंड पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया संगीत। तबले पर संगत दी थी के नटराजन ने। श्रोताओं, आइए सुनते हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5 बजने को हैं। 5 बजे आप सुनेंगे सबसे पहले वंदे मातरम। अब से थोड़ी देर में आप वंदे मातरम के बाद आप सुनेंगे 5 बजे हिंदी में समाचार और 5:05 पर हिंदी में समाचार। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। आपसे थोड़ी देर बाद ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार, और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। पांच बजकर 20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत, और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन कार्यक्रमों में भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन, और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का के बालकांड का भाग 67। छह बजकर पचपन मिनट पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार, और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत का, और 7:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का, और 8:15 पर आप सुन सकेंगे इंग्लिश अंग्रेजी समाचार। 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं, और 8:45 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। 9:15 पर समय होगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का, और 9:30 पर आप आनंद उठा सकेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दमाहक का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वॉशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति गंगटोक में आज शाम नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। राष्ट्रपति कल नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी।

0: और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज सुबह वे BSF की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, BSF अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में RBI शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP, Hema Malini, received the award. The legendary Indian violin maestro, Dr. N. Rajam, was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.T. Kumaraswamy were also present on the occasion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. In keep-

और पंजों को मिलाकर बैठें, यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें, हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें, गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएंगे।